वंदे मातरम, सुप्रभात। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आप सभी का रेडियो दोस्त सैकत चैटर्जी। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें, सानंद रहें, इसी मंगल कामना के साथ आपका स्वागत है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में। आज है दिन शुक्रवार, अंग्रेजी सन ईसवी 2026 की मई माह की 29 तारीख, तदनुसार शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 8वीं तिथि। अभी हमारी स्टूडियो की घड़ी में 5:58 होने को है। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आइए दोस्तों, अब दिल्ली केंद्र से जुड़कर सुनते हैं हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

0: एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं खेत खलिहानों की, किसान भाइयों की। आज हमारा विषय है मशरूम उत्पादन। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी प्रतिमा वर्मा का है।
2: तमाम किसान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान बंधु, कार्यक्रम में आज बातें मशरूम उत्पादन की। सामान्य रूप से छत्तेदार खाद्य फफूंदी को मशरूम या खुम्भी कहते हैं। झारखंड में इसे लोग प्राय खुकड़ी के नाम से जानते हैं। हजारों वर्षों से विश्व भर में मशरूम की उपयोगिता भोजन और औषधि दोनों ही रूपों में रही है। मशरूम को आहार के रूप में प्राचीन काल से ही उपयोग किया जा रहा है। ये पोषण का भरपूर स्रोत है। मशरूम में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती है। सही मायने में इसकी पौष्टिकता का पता अनुसंधान द्वारा चलता है कि इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन, विटामिन, लवण तथा प्रचुर मात्रा में खनिज तत्व विद्यमान है। उच्च कोटि के प्रोटीन का मतलब है कि इसमें सभी प्रकार के आवश्यक एमिनो एसिड उपलब्ध है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा लगभग 30-35% पाई जाती है। इसमें विशेष रूप से प्रोटीन की पाचन शक्ति 60-70% तक होती है, जो वनस्पति से प्राप्त प्रोटीन से भी अधिक ज्यादा है। ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। मशरूम ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत और न्यूनतम कैलोरी भोजन है। यह कई बीमारियों जैसे खून की कमी, बेरी बेरी, कैंसर, खांसी, मिर्गी, दिल की बीमारी में लाभदायक होता है। इसकी खेती कृषि, वानिकी और पशु व्यवसाय संबंधी अवशेषों पर की जाती है और उत्पादन के पश्चात बचे अवशेषों को खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। उत्पादन हेतु बेकार और बंजर भूमि का समुचित उपयोग मशरूम गृहों का निर्माण करके किया जा सकता है। इस प्रकार यह किसानों और बेरोजगार नवयुवकों के लिए एक सार्थक आय का माध्यम हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम मशरूम की खेती के स्थान के विषय में बातें कर लें। साधारणतः हवादार कमरा, ग्रीन हाउस, बंद बरामदा या छप्परों या कच्चे घरों में से खेती की जाती है। जहां तक मशरूम बीज की बात है तो अनाज के दानों पर बने उच्च गुण वाले प्रमाणित बीज का ही प्रयोग व्यवहार करें। इसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मशरूम की कई प्रजातियां हैं। सबसे पहले हम बटन मशरूम की बातें आपसे कर लें। बटन मशरूम को कंपोस्ट पर 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर उगाया जा सकता है। ऑयस्टर या ढिगरी मशरूम को 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर सभी मौसम में उगाया जा सकता है। धान के पुआल वाला मशरूम को 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर गर्मी में उगाया जाता है। झारखंड के किसान भाइयों, उत्पादकों के लिए सामान्य कमरे के तापक्रम पर ढिगरी मशरूम की खेती वर्ष के अधिकांश समय में हो सकती है। किसान बंधु, अब हम ढिगरी मशरूम तैयार करने की संक्षिप्त बातें आपसे कर लें। धान, नया गुंदली के पुआल के कुट्टी 1 से 1.5 किलो या गेहूं का भूसा 12 घंटे तक पानी में भिगो लें या आधा घंटे तक उबाल लें। भिगोने वाली पानी में आधा मिलीलीटर रोगर या नुवान या इंडोसल्फान और 1 ग्राम इंडोफिल या वेविस्टिन 75 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से डालें। ग्रामीण भाइयों, इसके बाद पानी निथार कर कुट्टी अथवा भूसे को छाया में सुखाना चाहिए और जब 50-60% तक नमी रहे तब 3 पॉलिथीन की थैलियों में 5 से 6 छिद्र करें। आवश्यक मात्रा का बीज इस कुट्टी मिला लें और फिर 3 से 4 तह लगाकर बिजाई करें। 30 से 50 ग्राम स्पॉन 1 किलो भीगे पुआल की कुट्टी के लिए पर्याप्त है। थैलों के खुले मुख में रबर बैंड या धागे से उसे बंद कर दें। 10 से 15 दिनों के लिए इसे मशरूम उत्पादन घर में रखें। कुट्टी सफ़ेद हो जाने पर पॉलीथीन शीट से काटकर हटा लें और दिन में 1 से 2 बार पानी का छिड़काव करें। 2 से 3 दिनों में मशरूम के छत्ते

0: निकल पड़ेंगे। इसकी तुड़ाई पुआल से सटाकर हल्का सा घुमाव देकर करें। वर्ष में 3 से 4 फसल ली जा सकती है। उपज प्रति किलोग्राम सूखे पुआल या फिर भूसे से लगभग 0.8 से 1 किलोग्राम ताजा मशरूम का उत्पादन होगा। किसान भाइयों, कार्यक्रम में ये हुई बातें मशरूम उत्पादन की। इसी के साथ कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति दीजिए। नमस्कार
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आपने सुना मशरूम उत्पादन को लेकर चर्चा। आइए दोस्तों, अब बारी है भक्ति की और हम जुड़ेंगे रामचरितमानस गान से। दोस्तों, हम सुनेंगे रामचरितमानस गान की कड़ी संख्या 162।
2: एपिसोड 162।

पतित पावनी गंगा का सुहावना तट, अशोक वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों की साथरी पर श्री राम तथा सीता रात्रि विश्राम कर रहे हैं। प्रभु को धरती पर शयन करते देख निषाद राज गुह का मन विषाद से भर जाता है। लक्ष्मण ने निषाद राज की मनोदशा भांप उन्हें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का उपदेश दिया। कहा, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भले बुरे का योग, मिलन और वियोग, शत्रुता, मैत्री तथा उदासीनता भ्रमजाल हैं। जन्म और मरण, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल इस जगत के जंजाल हैं।

0: धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। अर्थात धैर्य रखने पर समय अनुकूल सब कुछ होता है। वृक्ष तभी फल देते हैं जब उनका फल लगने का समय होता है, भले ही माली सौ घड़े पानी से रोज पेड़ को सींचे। अधीरता से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि नुकसान ही होता है। अधीर व्यक्ति व्याकुलता में गलत निर्णय कर बैठता है, जबकि धैर्यवान व्यक्ति सोच समझकर अनुकूल समय की प्रतीक्षा करता है। धैर्य इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखने में मदद करता है, क्रोध खीज से बचाता है, इंसान को संबल प्रदान करता है, नकारात्मकता से छुटकारा दिलवाकर तनाव मुक्त रहने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि धैर्य सहनशीलता का परिचायक है। धैर्यवान होना सरल नहीं है, या यह कहना भी शायद गलत ना होगा कि आज की दुनिया में धैर्यवान बनना सबसे कठिन है। मनुष्य के जीवन पथ पर कई रुकावटें बाधाएं आती हैं, रास्ते कठिन हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसे क्षण भी आते हैं जब कोई मार्ग नहीं सूझता है, मन अशांत विचलित हो गलत दिशा की ओर जाने के लिए मचलता है। ऐसे में धैर्य हमें गलत रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकता है, अवसाद कुंठा से घिरने से भी बचाता है। विचारों में सदैव सकारात्मकता का संचार कर मन को दृढ़ कर उम्मीद की किरण जगाता है। कबीर के दोहे की यही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। संत कबीर ने अपने इस दोहे से यही समझाने का प्रयास किया है। उतावलेपन से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, मेहनत का फल मिलेगा लेकिन समय आने पर ही। कई बार हम तत्काल लाभ प्राप्ति के लिए जीवन के मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं, लेकिन धैर्य ही इन अवगुणों से हमें बचाता है। जीवन को संयमित रखने के लिए यह एक अहम मूल मंत्र है। जब जिंदगी में निराशा के बादल छाते हैं तब यही हमें राह दिखाता है, इसलिए मानव का धैर्यवान होना आवश्यक है। जिसके भीतर यह गुण है वास्तव में कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी वह मुकाबला कर सकता है। ऐसे लोग शांत चित्त होकर मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और भटकाव से बच जाते हैं। भारतीय जीवन दर्शन में सब्र या धैर्य को व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी माना गया है। कहावत भी प्रचलित है कि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्यवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, किंतु एक विचलित मन मस्तिष्क वाला व्यक्ति सामने पड़ी काम की वस्तु को भी हड़बड़ी में अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है जिसे वह ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके अंदर अधीरता थी। इसके विपरीत धैर्यवान इंसान कोयले में भी हीरा निकालने का सामर्थ्य रखता है। हम इसे भगवान बुद्ध के इस प्रसंग से आसानी से समझ सकते हैं। बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ देशाटन पर निकले थे। नगर कस्बे गांव जंगल से घूमते हुए शिष्यों से ज्ञान चर्चा भी कर रहे थे और व्यवहारिक प्रमाण भी दे रहे थे। इसी बीच जंगल में एक नदी मिली, जिसे पार कर जंगल से निकलते ही बुद्ध ने अपने एक शिष्य से जल पीने की इच्छा जाहिर की। शिष्य जल्दी से जल लाने के लिए नदी की ओर गया, पर कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला, भगवान क्षमा करें, वह जल शुद्ध नहीं है। भगवान बोले, अभी तो हम उसी रास्ते से आए हैं, तब तो जल साफ था, अशुद्ध नहीं था। इस पर शिष्य ने कहा कि लेकिन अभी तो पूरी नदी ही काली हो गई है। तब बुद्ध ने दूसरे शिष्य को जल लाने के लिए भेजा। वह गया और एक घड़ा स्वच्छ जल लेकर आ गया। प्रभु ने पूछा, वत्स, क्या तुम जल कहीं और से लाए हो? उसने कहा, नहीं, मैंने नदी के जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा की, मिट्टी नीचे बैठ गई तब मैं साफ जल ले आया। मुस्कुराते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, पहले का जल काला इसलिए हो गया क्योंकि पशुओं ने नदी को पार किया था तो मिट्टी जल में घुल गई। तुमने धैर्य से थोड़ी देर मिट्टी के नीचे बैठने की प्रतीक्षा की, किंतु पहले वाले शिष्य ने अधीरता दिखाई और पानी तक पहुँच कर भी वह उसे ला ना सका। यही अंतर है धैर्य और अधैर्य में। अधीरता में व्यक्ति सामने उपलब्ध वस्तु को भी ठुकरा देता है और धैर्यवान व्यक्ति शांति से सही समय की प्रतीक्षा कर इच्छित वस्तु पा लेता है। रहीम जी ने भी इस बात को दोहे से समझाया है। रहीमन चुप ही बैठिए, देख दिनन की फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत बात नहीं बेर। अर्थात समय का फेर देख चुप ही बैठना उचित है, यानी उचित समय का समय संयम रखना चाहिए।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे चिंतन। ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब जुड़ते हैं कार्यक्रम वंदना से और सुनते हैं हरिहरण की आवाज में ये खूबसूरत सा भक्ति संगीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम वंदना। आइए दोस्तों, इसी कड़ी में आपने सुना हरिहरण को और अब सुनते हैं सुरेश वाडेकर को।

0: आइए दोस्तों, इस वंदना में भक्ति संगीत सुनने के बाद जुड़ते हैं गांधी कथा से। संकलन एवं वाचन स्वर रेडियो साथी अनुराधा सिंह का है।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, प्रस्तुत है गांधी कथा।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाली बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहां तहां जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़, डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां, आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियां हर एक गांव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियां शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो

दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। चूंकि गांवों के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सकें। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि शलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: गांधी कथा के बाद आइए दोस्तों अब सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा। आज का हमारा विषय है बच्चों में निमोनिया। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर नरेश भगत।
1: छोटे छोटे बच्चे हमारे आने वाले भारत के भविष्य हैं और इन्हीं छोटे छोटे बच्चों पर भारत की तरक्की निर्भर करती है। और यही छोटे बच्चे जब स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, खुश रहेंगे तो आगे चलकर भारत की एक अच्छी तस्वीर उकेरेंगे और भारत विश्व में एक अलग पहचान बनाएगा। तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, निरोगी रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक ऐसा ही बीमारी है जो नवजात से लेकर 5 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, वो है निमोनिया। निमोनिया क्यों हो जाता है, क्या कारण है और हमारे माता पिता किस प्रकार सजग हो कि जैसे ही मालूम पड़े कि हमारा बच्चा निमोनिया से ग्रसित होने वाला है तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उपचार शुरू कर दें और साथ साथ हम सावधानियां किस प्रकार रखें। बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर नरेश भगत।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चे में ये बीमारी आमतौर पर देखी जाती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो निमोनिया का भी शिकार हो जाता है। तो निमोनिया होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है और लक्षण हम किस प्रकार देखकर पहचान पाए?
2: बॉडी को स्टडी के लिए हम लोग डिफरेंट मैंने अनेक सिस्टम में बांटे हुए हैं। जैसे ऊपर में जो भेजा है ब्रेन है और इस नर्वस सिस्टम में आता है, उसके बाद नाक से शुरू होता है एक सिस्टम, फेफड़ा में ख़त्म होता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, मुंह से ख़त्म होकर एनस तक जो जाता है वो एक एलिमेंट्री कैनाल है, छाती में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, उसके बाद हड्डी और जो मसल का जो स्टडी करने के लिए जो बांटा गया है सिस्टम वो है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारा सिस्टम एनवायरनमेंट से खुला हुआ रहता है, हवा सांस में हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इस तरह से हवा लेते हैं उस क्रम में इन्फेक्शन जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे भी हमारा एटमोसफेयर में जो हवा में है उसमें डस्ट है, बैक्टीरिया है, स्पोर्स है, वो सब इन्फेक्शन का कारण बनता है, सांस में चला जाता है। तो निमोनिया का सबसे बड़ा कारण हम लोग मानते हैं इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन को हम लोग कहते हैं इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर का इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो इन्वेजन होता है वही इन्फेक्शन है। तो निमोनिया भी एक इन्फेक्शन से होने वाला बीमारी है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रमुख बीमारी है, श्वसन तंत्र का प्रमुख बीमारी है। इस बीमारी में फेफड़ा में सूजन आ जाता है, फेफड़ा लाल हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है, इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और जो फेफड़ा का जो मेन अंग जो काम करता है, जहाँ हवा का जो आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वहाँ पर पस भर जाता है और उसमें पानी भर जाता है, जिसके चलते जो फेफड़ा का जो मेन काम है गैसों का एक्सचेंज करना, उसकी क्षमता में कमी आ जाती है। बहुत सेवियर होने पर और भी लक्षण हैं, जैसे इसका मेन लक्षण है हमारा खांसी, बुखार, तेज सांस चलना, दम फूलना। अगर मरीज को तेज सांस के साथ में दम भी फूल रहा है या नीला हो जा रहा है ओट या शरीर, तो इसको तुरंत मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है और तो मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है। निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। अभी भी हमारे यहाँ जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें एक बहुत बड़ा इसका योगदान है।
1: जब बच्चा जन्म लेता है तो तुरंत वो निमोनिया से भी ग्रसित हो जाता है, तो इसका उपचार कैसे किया जाता है?
2: निमोनिया एक जानलेवा बीमारी है लेकिन सही इलाज से पूरी तरह से ठीक होने वाली ही बीमारी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जन्म से हम लोग 28 दिन का बच्चे को नियोडेट बोलते हैं, उस समय सांस का रेट होता है 40 से 60 होता है। अगर 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है बच्चा तो संभावित माना जाए कि बच्चा का चेस्ट में इन्फेक्शन है। इसको हम लोग डेंजर साइन के रूप में रहते हैं, तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और छोटे बच्चों को जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियल होता है, जनरली निमोनिया का जो कारण होता है ज़्यादातर वायरल होता है, लेकिन बैक्टीरिया वो अपने आप ठीक होता है। वायरल 2 to 7 days में बॉडी अपने रिस्पॉन्ड करता है और उसको करेक्ट कर लेता है, लेकिन सबसे दिक्कत बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारी है उसके लिए छोटे बच्चों में जनरली H. influenzae और स्टैफिलोकोकल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, निमोनिया का कारण ये है बैक्टीरिया।

0: और एक साल के बाद जो इन्फेक्शन होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या हम लोग निमोकोकस बोलते हैं, ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो छोटे बच्चों में जो होता है एच इन्फ्लुएंजी और स्ट्रेप्टोकोकस, उसके लिए हम लोग एम्पिसिलिन साथ में जेंटामाइसिन या क्लोक्सासिलिन के साथ मिला हुआ, मैंने पेनिसिलिन ग्रुप और जेंटामाइसिन के साथ मिला हुआ हम लोग दवा देते हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। सही इलाज सही समय पर होने से निमोनिया पूरी तरह से ठीक होने वाला और पूर्णतः ठीक हो जाता है
1: जी। और एक बार जब निमोनिया बच्चे को ठीक हो जाता है तो कितना संभावना है कि बार बार उसे हो, और हम इसका देख रेख कैसे करें? बचाव ही कहते हैं सबसे बड़ा उपाय है।
0: हाँ, आपने सही कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम लोग कहते हैं। तो निमोनिया के बचाव के लिए फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग और वेंटिलेटेड रूम होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है न्यूट्रिशन, पोषण भी अच्छी तरह होना चाहिए। पोषण से बॉडी का इम्यूनिटी बना रहता है, खासकर हमारे झारखंड में मालन्यूट्रिशन की ये समस्या है, जिसके चलते बच्चे का शरीर कमज़ोर रहता है और इम्यूनिटी कम रहता है, जिससे ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी घर कर जाता है। प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है। इसका एक टीका आया हुआ है निमोनिया का, जिसको हम लोग निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं, सिनफ्लोरिक्स या प्रिवेनार के नाम से बाजार में उपलब्ध है। यद्यपि ये महंगा है, ये अगर जो लगवाना चाहते हैं वो लगवा सकते हैं। हमारे सरकारी सिस्टम में जो अनिवार्य टीके हैं वही उपलब्ध होते हैं, ये ऑप्शनल टीका में आता है, इसलिए उपलब्ध नहीं है। अन्य भी उपायों से हम निमोनिया का बचाव कर सकते हैं। जैसे टीकाकरण के दौरान 9 महीना से 1 साल के बच्चे को हम लोग विटामिन ए का सिरप देते हैं। विटामिन ए को हम लोग कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। 1 साल में चालू करने के बाद हर 6-6 महीने में बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिलाया जाता है, जो 5 साल तक पिलाया जाता है। टोटल 9 डोज पिलाया जाता है। विटामिन ए को हम लोग एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं, जिससे बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ता है और बार बार जो निमोनिया डायरिया या इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसलिए टीकाकरण में विटामिन ए का सिरप अवश्य पिलाएं। खान पान में भी ऐसी चीज़ों का समावेश करें जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो।
1: खान पान में हम किस तरह के फलों का सेवन करें और घर में जो अनाज है उसका हम बच्चों को सेवन कराएं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो खाने में बहुत झिकझिक करते हैं।
0: आपने सही कहा, बच्चे आजकल जो फास्ट फूड कल्चर आ गया है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, जो ये स्वादिष्ट तो है लेकिन न्यूट्रिटिव नहीं रहता है। बच्चों को सीजनल फ्रूट्स दिया जाए, खासकर विटामिन ए की जो मात्रा मिलती है हमारे लाल पीले फलों मिलती है, जैसे आम हो गया, टमाटर हो गया, गाजर हो गया, इस समय ज़्यादा मिलता है। तो इन फलों का समावेश जरूरी करना है। गाजर का उसको सलाद बना के दिया जा सकता है, हलवा बना के दिया जा सकता है। साथ में हरी हरी सब्जियों का समावेश किया जाए जिसमें विटामिन ए की मात्रा रहती है।
1: और सबसे बड़ी बात कि हमारे माता पिता को सजग होने की आवश्यकता है। बच्चे को यदि हम सही से देख रेख करते हैं, खासकर जो हमारा नवजात शिशु है उसको देख रेख की आवश्यकता है। और जब ऋतु परिवर्तन होता है और खासकर हम ठंड के मौसम की बात करें, तो ये बीमारी ज़्यादा बच्चों को अपने गिरफ्त में लेती है।
0: हाँ, सही कहा, बच्चों का शरीर छोटा होता है, गर्मी कम बनता है। तो जैसा मैंने कहा कि 0 से 28 दिन का बच्चा को हम लोग न्यूनेट बोलते हैं, सांस 40 से 60 बार लेता है। ज़्यादा 60 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बच्चे को ठंडा से बचाने के लिए 3-4 लेयर गर्म कपड़ा पहनाएं, साथ में अगर कोई जगह रहते हैं दिन में तो उसको गोद में रखें, अपना बदन से सटा करें ताकि गर्मी मिले। हम लोग जब कम वजन वाले बच्चे या प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं उसका हम लोग KMC कराते हैं, कंगारू मदर केयर कराते हैं। उसमें स्किन को स्किन कंटैक्ट करा के बच्चे का टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं। एक गर्म बच्चे को गर्म रखने का विधि है कंगारू मदर केयर, जिससे बच्चा गर्म रहता है, ठंड नहीं लगता है, जिसके चलते निमोनिया हो किसी पे बचाव का उपाय बनता है।
1: खान पान के भी ध्यान रखने की आवश्यकता, और खासकर जो बच्चा नवजात है तो माता अपने स्तनपान उसे ज़रूर कराएं। ये बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ावार के लिए, और बच्चे को मानसिक रूप से विकास होगा, बच्चा का विकास सही होगा और बच्चा का बढ़ावार सही होगा और वो चपल होगा, चंचल होगा, और यही बच्चे आगे चलकर देश का निर्माण करेंगे।
0: माँ का दूध जो पहला दूध पिलाया जाता है कोलेस्ट्रॉल, उसको फर्स्ट वैक्सीनेशन भी कहते हैं अनऑथराइज्ड रूप से, क्योंकि विटामिन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए विटामिन ए की मात्रा रहती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है माँ का पहला दूध को बच्चे को अवश्य पिलाएं, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी और जो जैसे मैंने बताया कि विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कहते हैं, इन्फेक्शन से रोकने में मदद मिलेगी।
1: तो सभी माताओं और बहनों से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि अपने बच्चों को देख रेख ठीक से करें। यदि बच्चा छोटा है तो उसे स्तनपान कराएं, और बाहर की चीज़ें जैसा डॉक्टर साहब ने बताया फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। बच्चे ज़रूर ललायित होते हैं, लेकिन बच्चों के मांग पर आप नहीं जाएं। बच्चे को घर का बना हुआ खाना खिलाइए और फल का सेवन बच्चे को ज़रूर खिलाइए। बच्चे आपके तंदुरुस्त रहेंगे और आप भी खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। डॉक्टर ने
2: दोस्तों आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा। आइए दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा के तहत आपने सुना डॉक्टर नरेश भगत को। अब हम जुड़ते हैं दिल्ली केंद्र से और बारी बारी से सुनते हैं संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक सञ्चार माध्यमेन श्रीमोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गान्धीनगरे ४३,३०० कोटिरूप्यकाणां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्रीशाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। गुजरातराज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्रीशाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रान्तरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलम्पिक क्रीडानां, कॉमनवेल्थ क्रीडानां, विश्वारक्षक क्रीडानां, अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां, विशेषतः महिलानां, निर्धनानां, बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य आरभ्य अस्य मासस्य 31 दिनाङ्कपर्यन्तं कर्णाटक गोवा केरल राज्यानां त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। अद्य सः कर्णाटके बेंगलुरुनगरे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इत्येतस्य संस्थानस्य 45 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते वैश्विक समारोहे सहभागं करिष्यति। तदनन्तरं सः कर्णाटकस्य दावणगेरे स्थितस्य विश्वविद्यालय बीडीटी अभियांत्रिकी महाविद्यालयस्य प्लैटिनम जुबली इति महारजत जयन्त्युत्सवे अपि सहभागं करिष्यति। कर्णाटकस्य मुख्यमन्त्री सिद्धारमैया इत्यसौ गतवासरे लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिकरूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् सम्बोधयन् सः प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिकरूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतनमुख्यमन्त्रिणः पदभारग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 36,100 विधायकानां समर्थनेन कांग्रेसदलस्य पूर्णबहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजनीतौ स्वकीयाम् अरुचिं प्रकटयन् उक्तवान् यत् सम्प्रत्यसौ राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। भारतीयर्तुविभागेन अनुमितं यत् देशस्य उत्तरपश्चिमीय दिग्विभागस्य कतिपयक्षेत्रेषु अतितापघटनायाम् अपचितिः भविष्यति। अन्ते क्रीडावार्तासु, आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां अद्य उपान्तिचक्रीये द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन समं स्पर्धिष्यते। स्पर्धा सायं 7:30 आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजाति समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा

0: The winner will take on Royal Challengers Bengaluru in the final on Sunday at Narendra Modi Stadium in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 7:10 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक द्वारा भजन।

ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, इसके पहले आपने हमारे केंद्र से जुड़कर सुना खेती की बातें, रामचरित मानस गान, चिंतन, वंदना, गांधी कथा एवं स्वास्थ्य चर्चा। आपने दिल्ली केंद्र से रिले संस्कृत समाचार, हिंदी समाचार व अंग्रेजी समाचार भी सुना। यह है हमारा प्रातकालीन सभा। फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है दोस्तों। यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पलाश, यह है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए पलाश के तहत फिर से एक बार सुनते हैं झिरगा भगत एवं साथियों को।

तुम पर आधारित था और आज के हमारे कलाकार थे झिरगा भगत एवं साथी। आइए दोस्तों, अब जुड़ते हैं सुगम संगीत पर आधारित हमारा कार्यक्रम स्वर सरिता से। स्वर सरिता में आज हम सुनेंगे फैज अहमद फैज के लिखे गजलों को। आवाज दे रही हैं अबीदा परवीन।

दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर सरिता। आज की कलाकार थी अबिदा परवीन। आप सुन रहे थे फैज के लिखे गजलों को। आइए दोस्तों अब जुड़ते हैं दिल्ली और रांची केंद्रों से, जहां से बारी बारी से सुनेंगे हिंदी समाचार, अंग्रेजी समाचार और प्रादेशिक समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
3: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को

0: ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने

सुरक्षा परिषद सचिव सरगेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए

0: ये फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है, और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आवास के लिए जारी किए 10,000 करोड़। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकलने की दी सख्त चेतावनी। कहा, देश में किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत 20 जिलों में 1 जून तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। और भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के 3 खिलाड़ियों का चयन। मार्शल आर्ट्स में झारखंड ने जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड समेत देश के 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बोकारो पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कड़े लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि झारखंड के अंदर जितने भी घुसपैठी छिपे हुए हैं वे तुरंत बाहर निकल जाएं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का साफ संदेश है कि देश में किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा।
2: 1,00,000 बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए रांची में घुस चुके हैं। जो घुसपैठिए हैं उनको कहना चाहूंगा कि भाई आप झारखंड छोड़ के भागो, देश छोड़ के भागो। ये अमित शाह है जिन्होंने कहा अब देश में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा।
0: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की जेल भेजने वाली धमकी पर कड़ा जवाब दिया है। जामताड़ा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते। श्री मरांडी ने स्वास्थ्य विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री को सीएजी की रिपोर्ट देखनी चाहिए जिसमें एम्बुलेंस के दुरुपयोग और लापरवाही की बात साफ कही गई है।
3: मंत्री को तो सीएजी का रिपोर्ट देखनी चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या लापरवाही हुई, दुरुपयोग हो रहा है। कई मशीनें हॉस्पिटलों में पड़े पड़े सड़ रहा है, एक हॉस्पिटल बना हुआ है और डॉक्टर ही पदस्थापित नहीं है, तो फिर इक्विपमेंट चलाने वाला व्यक्ति को तो आप बहाल करते, तो भी आपके डॉक्टर नहीं रहता है तो क्या उद्घाटन होगा। डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है।
0: राज्य में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क आज रांची पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान दोनों नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने साफ किया है कि पार्टी संगठन से एक राज्यसभा सीट की मांग करेगी।
4: हमारे प्रभारी के राजू सर और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी साहब आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम कांग्रेस जनों के साथ वे लोग बातचीत करेंगे। तो कांग्रेस की इच्छा है कि एक सीट इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को मिले।
0: झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विशेष गहन पुनरीक्षण और जनगणना 2027 को लेकर अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पार्टी अब पूरी तरह मिशन मोड में काम कर रही है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे खुद राज्यभर में घूमकर नेताओं और बूथ लेवल एजेंटों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जेएमएम का लक्ष्य हर पंचायत और बूथ तक संगठन को मजबूत करना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार xhandle@airnewsalerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार @rni_rachi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड 17 में नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ डॉक्टर मीरा मुंडा, मुकेश भगत और राजेश कुमार मुन्ना भी मौजूद रहे। श्री मुंडा ने कहा कि देश के गरीबों तक सस्ती और अच्छी दवाइयां पहुंचाना प्रधानमंत्री का सपना है। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे मरीजों को ज्यादा से अधिक जेनेरिक दवाएं ही लिखें।
5: ये प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोग्राम है कि देश भर में बैन इंडिया जन औषधि केंद्र के माध्यम से जेनेरिक मेडिसिन उसको उपलब्ध हो ताकि हर आदमी को दवा होगा उपलब्ध होता हो, जिसमें दवा की कीमत ऐसे हो जिससे कि आम आदमी दो दवा प्राप्त कर सके।
0: वन विभाग ने हजारीबाग के मोतरा अधिसूचित वन क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने जंगल से करीब 60 टन अवैध कोयला जब्त किया है। अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल में अवैध रूप से कोयला जमा किया जा रहा है। इसके बाद टीम ने छापेमारी अभियान चलाकर जंगल के अलग अलग हिस्सों से भारी मात्रा में कोयला बरामद किया। लातेहार जिले में पुलिस ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 6 तस्करों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों के पास से नशीला पदार्थ और उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पकड़े गए अपराधी इलाके में युवाओं को अपना शिकार बनाते थे और काफी समय से नशीली दवाओं की तस्करी में शामिल थे। पुलिस अब इनसे पूछताछ कर इस पूरे नेटवर्क के मुख्य सरगना का पता लगाने में जुटी है। राज्य में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर 2 टर्फ लाइन सक्रिय है, जिससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आई है। आने वाले 2 से 3 दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री और गिर सकता है। मौसम विभाग ने 1 जून तक राज्य के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत करीब 20 जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। आगामी थाईलैंड दौरे के लिए घोषित भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य के 3 होनहार खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इन खिलाड़ियों के नाम आदर्श राज, ऋषि राज और जेनुअल हक है। भारतीय टीम इस दौरे पर 5 दिवसीय इंडो थाई क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेगी। सभी खिलाड़ी कल कोलकाता के रास्ते थाईलैंड के लिए उड़ान भरेंगे। मुंबई में आयोजित 6वीं नेशनल जीत कुने दो मार्शल आर्ट्स फेडरेशन कप में राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 14 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिन्हें पछाड़कर झारखंड ने पहला स्थान हासिल किया। राज्य के मार्शल आर्ट्स खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में कुल 19 पदक जीते। इनमें 11 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रांची के लापुंग से 10 लाख के इनामी उग्रवादी की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पेशा को लेकर 19 विभागों ने 3 माह बाद भी नहीं दी एसओपी, स्थानीय स्वशासन का सपना अधूरा। हिंदुस्तान लिखता है, वेतन विपत्र भुगतान की प्रक्रिया को बनाया गया सुरक्षित और पारदर्शी। प्रभात खबर के शब्द हैं, बीआईटी मिश्रा में झारखंड के विद्यार्थियों का खत्म हुआ 50% कोटा, सरकार के साथ एमओयू 2 साल से लंबित। दैनिक जागरण ने लिखा है, नहीं रहे मोहब्बत के पैगाम बांटने वाले शायर बशीर बद्र। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड समेत 12 राज्यों को दी बड़ी सौगात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण आवास के लिए जारी किए 10,000 करोड़। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकलने की दी सख्त चेतावनी, कहा देश में किसी भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर रांची में सियासी हलचल तेज। सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस के बड़े नेता आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत 20 जिलों में 1 जून तक आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं और

भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट टीम में राज्य की 3 खिलाड़ियों का चयन। मार्शल आर्ट्स में झारखंड ने जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज हूं मैं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रजनी। मनोहर महतो और उनके साथियों की आवाज में आइए सुनते हैं संथाली लोकगीत लोकरंग के अंतर्गत।

दोस्तों, ये है आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपका रेडियो साथी सैकत चैटर्जी। दोस्तों, अब हम सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। दोस्तों, गीत गुंजन कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आपको बताते चले कि आज है 29 मई और आज ही के दिन यानी कि 29 मई 2020 को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार योगेश का निधन हो गया था। उनका असली नाम योगेश गौड़ था और उनका जन्म 19 मार्च 1943 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था, जबकि उनका निधन 29 मई 2020 को हुए थे। दोस्तों, योगेश ने अपनी जिंदगी में, अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन गीतों को रचा लिखा। आइए दोस्तों, आज गीत गुंजन कार्यक्रम उनको समर्पित करते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म जो 1971 में आई थी, आनंद। आनंद को जाना जाता है राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन की शानदार एक्टिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा योगेश ने इस फिल्म के लिए कई बेहतरीन गीत लिखे जिसे सलील चौधरी ने सुरों से सजाया था। तो आइए दोस्तों, आनंद फिल्म के उस गीत को सुनते हैं जिसे गाया है मुकेश ने।

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा ये गीत गुंजन कार्यक्रम गीतकार योगेश को समर्पित है। तो आइए सुनते हैं 1974 में आई फिल्म रजनीगंधा से उस गीत को, जिसे गाया है फिर से एक बार मुकेश, लिखा है योगेश और सुर दिया है सलील चौधरी ने।

दोस्तों 1976 में एक फिल्म आई थी छोटी सी बात। कलाकार थे अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी। इस फिल्म से जिस गीत को हम सुनाने जा रहे हैं उसे फिर से एक बार लिखा है योगेश और संगीत दिया है सलील चौधरी ने, जबकि आवाज से सवारा है आशा भोंसले और यशुदास ने।

गीत गुंजन कार्यक्रम के आखिरी पादान पर आइए दोस्तों फिर से एक बार सुनते हैं योगेश के लिखे एक खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया है 1975 में आई फिल्म मीली से। इसे आवाज दिया है किशोर कुमार, जबकि इस गीत को संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गुंजन, जो आज योगेश को समर्पित था क्योंकि आज का दिन उनका मृत्यु तिथि है। तो आइए दोस्तों, गीत गुंजन के इस सफर के बाद हम शुरू करते हैं कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

दोस्तों, ये है कार्यक्रम जोहार पलामू। इसके प्रस्तुत करता है संजीव कुमार लाल, जबकि प्रस्तुति स्वर है मेरा, यानी कि आप सभी का रेडियो साथी सैकत चैटर्जी का। दोस्तों, आपने इससे पहले सुना था कार्यक्रम गीत गुंजन। उसमें हम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार योगेश को श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि आज के ही दिन यानी कि 29 मई उनका निधन हो गया था। दोस्तों, इस कार्यक्रम में यानी कि जोहार पलामू कार्यक्रम में आपको बताते चले कि आज ही के दिन 29 मई 1972 को हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय नाट्य जगत रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में से एक पृथ्वीराज कपूर का भी निधन हो गया था। पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता मूक फिल्मों से अपना फिल्मी करियर शुरू किया था। उन्हें भारतीय जननाट्य संघ इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक होने का भी गौरव हासिल है। पृथ्वीराज कपूर ने सन 1944 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की थी, जो देश भर में घूम घूम कर नाटकों का प्रदर्शन करता था। इन्हीं से कपूर खानदान की भी शुरुआत भारतीय सिनेमा जगत में होती है। दोस्तों, 1972 में उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। पृथ्वीराज कपूर को कला के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार के द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मान

0: सम्मानित किया गया था। पृथ्वीराज कपूर पेशावर पाकिस्तान के एडवर्ड कॉलेज से स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने एक साल तक कानून की शिक्षा भी प्राप्त की, जिसके बाद उनका थिएटर की दुनिया में प्रवेश हुआ। 1928 में उनका मुंबई आगमन हुआ था। कुछ एक मूक फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने भारत की पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाई।
1: काका ने आज शाही तख्त को अपने बादशाह का इंतजार है, यही मुकद्दस बुजुर्ग। अब इस तख्त पर हमारी बेटी आलम आरा बैठी। आलम आरा जिंदाबाद, आलम आरा जिंदाबाद, आलम आरा जिंदाबाद।
0: दोस्तों, 29 मई 1972 को महज 65 वर्ष की उम्र में उनका निधन मुंबई में हो गया था। वो फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और लेखक थे। उनके जीवन संगिनी का नाम राम सरनी मेहरा था। उनके तीन बच्चे राज कपूर, शम्मी कपूर एवं शशि कपूर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कलाकार, निर्माता, निर्देशक हैं। दोस्तों, उन्होंने 1931 में आई भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में मुख्य भूमिका निभाने के साथ साथ 1973 में आई फिल्म विद्यापति में भी काम किया। उन्हें 1941 में आई फिल्म सिकंदर में उनके अभिनय के लिए भी याद किया जाता है। राज कपूर की फिल्म आवारा में, जो 1951 में आई थी, उन्होंने एक शानदार किरदार निभाया था। इसके बाद दोस्तों आई थी 1960 में बनी फिल्म मुगल ए आजम।
2: ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयान यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक।
3: सही नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीस को यही उम्मीद थी।
2: दरोगा जिंदान, इस बेबाक रौंदी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो।
0: इस फिल्म में उन्होंने बादशाह अकबर की किरदार में इतनी जान डाल दी कि पूरे फिल्म में वो छाए रहे। आज तक कहीं भी अकबर की भूमिका कोई अभिनेता अदा करता है तो पृथ्वीराज कपूर का चेहरा बरबस ही आंखों के सामने तैर जाता है। दोस्तों, उन्होंने 1963 में प्यार किया तो डरना क्या फिल्म में भी अपनी झलक दिखाई थी। इसके बाद दोस्तों, जब कपूर खानदान की फिल्म आई कल, आज और कल, 1971 में ये फिल्म आई थी। ये उनकी आखिरी फिल्म थी और इसमें भी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणबीर कपूर की झलक स्टेज पर देखने को मिला था। तो फिर आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम के इस कड़ी में पृथ्वीराज कपूर को श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं उनकी फिल्म मुगल ए आजम से उस गीत को, जिसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मील का पत्थर कहा जाता था। इस गीत को एक क्लासिक डुएट का भी दर्जा मिला हुआ है, जिसे आवाज से संवारा था शमशाद बेगम और लता मंगेशकर। इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे नौशाद, जबकि गीतों को लिखा था शकील बदायूनी।

आइए दोस्तों, जोहार पलामू कार्यक्रम के तहत अब डालते हैं एक नज़र उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर जो 29 मई को घटी थी और पूरे विश्व इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराई थी अपनी उपस्थिति। तो दोस्तों बताते चले कि 29 मई 1990 को बोरिस यल्त्सिन सोवियत संघ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे और 29 मई 1999 को नाइजीरिया में नागरिक सत्ता की स्थापना हुई थी। 29 मई 2003 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर इराक के पुनर्निर्माण कार्यों का अवलोकन करने के लिए बसरा पहुंचे थे। 29 मई 2004 को म्यांमार में चक्रवाती तूफान में 140 लोगों की जान चली गई थी। पूरे विश्व के लिए यह एक दर्दनाक हादसा था। इसी दिन पाकिस्तान ने परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी थी। 2007 के 29 मई को जापान की रियो मोरी मिस यूनिवर्स 2007 बनी थी। 2008 के 29 मई को भारतीय जनता पार्टी के नेता वी एस येदुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2008 के 29 मई को ही इंटरनेट सर्च इंजन गूगल ने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट माई स्पेस के साथ ईमेल संबंधी समझौता किया था। इसी दिन नेपाली सरकार ने राजतंत्र का अंत कर गणतंत्र की घोषणा करते हुए शाही महलों सहित देश के सभी भागों से राजतंत्र के सभी चिन्ह हटाते हुए राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी थी। 2010 के 29 मई को अमेरिका और भारत के बीच सितंबर 2008 में हुए 123 एग्रीमेंट में छोड़ दिए गए परमाणु ईंधन की रीप्रोसेसिंग की पहलू पर अमेरिकी प्रशासन ने सहमति का ऐलान किया था। इसी दिन यानी कि 2010 के 29 मई को भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने हेनान प्रांत के लुओयांग में पहली सदी के प्राचीन स्वेत्सात व्हाइट हॉर्स मंदिर परिसर में भारतीय शैली से निर्मित एक बौद्ध मंदिर का लोकार्पण किया था। भारत की ओर से बनाए गए इस मंदिर पर करीब 18 करोड़ रुपए की लागत आई थी और इसके निर्माण में 3 वर्ष लगे थे। आइए दोस्तों अब जान लें 29 मई को जन्मे विख्यात व्यक्तियों के बारे में। तो बताते चले दोस्तों आपको कि 1977 के 29 मई को भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और अधिवक्ता एल मुरुगन का जन्मदिन है। भारत के जाने माने कवि मदन कश्यप का जन्म 29 मई 1954 है, जबकि भारत के प्रसिद्ध व्यंग कवि हुल्लर मुरादाबादी का जन्म 29 मई 1942 है। हिंदी के जाने माने निबंधकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 ईस्वी के 29 मई को है, जबकि कराना घराने की हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हीराबाई बोरदेकर का जन्म 29 मई 1905 को माना गया है। पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी शख्सियत रामानंद चटर्जी का जन्म 1865 ईस्वी के 29 मई को कहा गया है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं 29 मई को हुए विख्यात व्यक्तियों के निधन। जैसे कि पहले ही बता चुके हैं दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश का निधन 29 मई 2020 को हो गया था, जबकि हिंदी फिल्म और रंगमंच के अभिनय के इतिहास पुरुष जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित किया था पृथ्वीराज कपूर का निधन भी 29 मई 1972 को ही थी। लोकराम नयन राम शर्मा भारत के स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार और संगठनकर्ता थे, जिनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था। सुनीति कुमार चटर्जी जो भारत के प्रसिद्ध भाषाविद साहित्यकार तथा विद्याशास्त्री थे, उनका निधन 29 मई 1977 को हो गया था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जो किसानों की आवाज बुलंद करने वाले प्रखर नेता माने जाते थे चौधरी चरण सिंह का निधन 29 मई 1987 को हो गया था और भारतीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ व राजनेता अजीत जोगी का निधन 29 मई 2020 को हो गया था। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं 29 मई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव कौन कौन से हैं। तो दोस्तों 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट दिवस के बारे में, जानेंगे इसके बारे में, इसके हर पहलुओं पर डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा फिल्म गीत।

दोस्तों आप लोगों ने सुना ये खूबसूरत सा फिल्म गीत जो हर पलामू कार्यक्रम के तहत आइए अब जान लेते हैं आज यानी कि 29 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस क्या है। दोस्तों आपको बताते चले कि ये विशेष दिन 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे शेरपा के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कि 8849 मीटर पर है पहली बार सफलता पूर्वक चढ़ाई करने का ऐतिहासिक उपलब्धि के याद में मनाया जाता है। दोस्तों इस ऐतिहासिक शुरुआत 29 मई 1953 को सुबह 11:30 पर हुई थी जब इन दोनों दिग्गजों ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी को फतह कर इतिहास रचा था। इस दिवस की स्थापना कैसे हुई थी दोस्तों आइए इस पर भी डालते हैं एक नजर। तो महान पर्वतारोही सर एडमंड हिलरी के निधन के बाद नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2008 में हर साल 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस

के रूप में मनाने की, और इसका उद्देश्य यह है कि पर्वतारोहियों का साहस, उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और हिमालयी क्षेत्रों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों आइए जोहार पलामू कार्यक्रम से अब लेते हैं विदा और जुड़ते हैं आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से एफएम के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होने वाला हमारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग से।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
3: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
3: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणी कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
3: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
3: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
3: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
3: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, अब एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
3: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
3: गुलाब की कई प्रजातियाँ चीन से ही विकसित हुई है और धीरे धीरे ये प्रजातियाँ पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
3: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
3: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
2: जी,
3: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
2: जी,
3: वास्तव में ये काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
2: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
3: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
2: जी,
3: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
2: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
3: जी, वो तो है।
2: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
3: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
2: जी,
3: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
2: बिल्कुल।
3: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
2: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है, जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का।
3: जी,
2: पीला गुलाब मित्रता का और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है।

0: गुलाब
1: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस, लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: जी, हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली। जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए, सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए, स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थीं। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
5: ना छोड़नु, ना छोड़नु।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
1: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर एस रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी

0: सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विनम्रता, क्षमाशीलता और श्रेष्ठ आचरण ही व्यक्तित्व के सच्चे आभूषण हैं। संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हीं गुणों के साथ देशवासी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा मौत मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Union Home Minister Amit Shah has said that the Centre's high-level committee on artificial demographic changes due to illegal immigration and other unnatural causes will also assess whether a law is required to tackle the issue. Mr. Shah said the committee will examine the causes behind the artificial demographic shifts that have occurred across the nation. It will deliberate on the remedial measures required and should the enactment of any specific legislation be necessary. The Home Minister

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
0: अरे
1: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
0: क्या बात है,
1: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ।
0: हाँ।
1: और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
0: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
1: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
0: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
1: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
0: अच्छा,
1: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
0: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल दीदी, है ना, बहुत अच्छा।
0: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
1: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
0: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
1: देखो
0: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
1: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या है ये तो। दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
0: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
1: बिल्कुल दीदी, और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापस से यूट्यूब पे जाकर कहीं ना कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
0: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
1: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।
2: ढल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं आप बताइए।
1: बस बढ़िया है। यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाएं, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रंजा फिल्म का गीत है रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप,
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने। और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं, क्यों?
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ खुराक में ही है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बेग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ उसको रिपेयर करते हैं हम सुबह और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी,
0: तो नए बनाते हैं या

0: चीजों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? तयबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी जी,
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेतीबाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
0: बाजरी के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है टाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नीमे श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम का हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पोप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा, चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी,
0: जी। तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छाव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।
2: नील

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला कासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पे सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट
1: हाँ
0: आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे
0: अरे वाह,
1: दिन में।
0: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और
1: हमें
0: भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं
1: हमें
0: कि सभी
1: हाँ
0: समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुना है गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है
0: सुनते हैं आपकी
1: आपको।
0: पसंद का ये गीत कभी तू

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवद अनुरोध कि कृपया आगामी दो माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002466228602888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना

0: सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

सोनू निगम को आप सुन रहे थे जान एल्बम से, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की

0: समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मना डे, महेंद्र कपूर, श्यामा और साथियों की आवाजों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं, और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना

0: सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

0: కనకలత. भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है. इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया. पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए. शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है. विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए ओडिशा सरकार इंटेल और 3DGS को समझौता ज्ञापन पर बधाई दी है. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा. कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है. हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है. इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है. श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था. रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते. मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे.
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है. राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है. उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है. ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है. भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है. अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है.
0: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है. व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई. भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है. ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है. टैंकर निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है. इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है. उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में कल देर रात आए तूफान

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं तृप्ति कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा। राज्य में चल रहे फ्लाईओवर, सड़क और शहरी आवास प्रोजेक्ट्स का लेंगे हिसाब किताब। डीजीपी कानून व्यवस्था पर आज उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ कर रही है समीक्षा। अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सांसद निशिकांत दुबे ने दी बड़ी सौगात। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे मुफ्त चलेंगी 7 हाईटेक नमो एम्बुलेंस। राज्य में आंधी बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। भारतीय मौसम विभाग ने देश में इस साल जून से सितंबर के दौरान कम मॉनसून का जताया अनुमान। और राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को मिलेगी हॉकी की ट्रेनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल स्तर पर शुरू होगा विशेष हॉकी प्रशिक्षण अभियान। और अब सड़क और पथ निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य भर में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे फ्लाईओवर, नई सड़कों के निर्माण और शहरी आवास योजनाओं की प्रगति का हिसाब किताब लिया जाएगा। मुख्यमंत्री अधिकारियों को सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के भीतर तेजी से पूरा करने के कड़े निर्देश देंगे। डेमोग्राफी चेंज की जांच के लिए केंद्र सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई है। इस पर राज्य में सियासत तेज हो गई है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि घुसपैठ से आदिवासियों की आबादी घट रही है।
1: यदि डेमोग्राफी बदल जाएगी तो राष्ट्र हित में, देश हित में और राज्य हित में निश्चित रूप से आने वाले दिन में जो दुर्गामी परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। इसलिए गृह मंत्री जी ने इसको जस्टिस जो हाई कोर्ट के चीफ कोर्ट के जो जस्टिस है उनके अध्यक्षता में ये कमेटी बनाने का काम किया।
0: दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने इसे भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति बताया है।
2: आपके हाथ में 12 वर्षों से आपकी शासन ने बॉर्डर में तैनात कर दी है ना, कि किसका प्रतीक्षा कर रहे हैं और कितने वर्षों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाढ़ लगा दीजिए, नाला कोड़ दीजिए, नदी कोड़ दीजिए, गोली मार दीजिए, क्या जो मानसिक ड्रामा कर रहे हैं ये।
0: राज्य की डीजीपी तजाचा मिश्रा की अध्यक्षता में आज पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हो रही है। पद संभालने के बाद पहली बार डीजीपी राज्य के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों

0: के साथ आमने सामने बैठक कर रही हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नक्सली गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनता को एक बड़ी सौगात दी है। वे अपने संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 7 अत्याधुनिक नमो एम्बुलेंस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। ये एम्बुलेंस सेवा साल के 365 दिन और 24 घंटे पूरी तरह मुफ्त रहेगी। खास बात यह है कि इसका पूरा खर्च सांसद अपनी निजी कोष से उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सीईओ अनुराग बेहर और उनके सहयोगियों ने मुलाकात की। इस महत्वपूर्ण बैठक में रांची में बन रही अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, 1000 बेड की अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्कूल के निर्माण कार्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। राज्य में वर्ष 2027 के अप्रैल मई में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा, जो इसी साल जुलाई से शुरू होने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए सरकार की ओर से आयोग में सदस्य सचिव की पोस्टिंग भी कर दी गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश से अप्रैल से फैले खसरे के खतरनाक प्रकोप को देखते हुए झारखंड का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। सरकार की गाइडलाइन के तहत सीमावर्ती संथाल, परगना और खासकर पाकुड़ जिले में विशेष निगरानी शुरू कर दी गई है। पाकुड़ के जिला प्रतिक्षण पदाधिकारी डॉक्टर एसके झा ने बताया कि संक्रमण को रोकने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है।
1: तो हमारे यहाँ जो है सिविल सर्जन महोदय के निर्देशानुसार रैपिड रिस्पांस टीम जो है उस पर एक्शन लेते हुए जो भी एरिया प्रभावित एरिया था वहाँ स्पेशल हम लोगों का कैंप किया गया। कैंप के थ्रू जो है जितने भी प्रभावित बच्चे साथ ही साथ उसके जो संपर्क में आने वाले बच्चे सबको बचाव हेतु विटामिन ए का सोल्यूशन पिला दिया गया है।
0: पलामू जिले के पाटन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मिथिलेश कुमार की तेज रफ्तार कार कल रात अनियंत्रित होकर एक घर के आंगन में घुस गई। इस हादसे में वहां सो रहे ग्रामीण विनोद सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और डॉक्टर को भी गंभीर चोटें आई हैं। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 23,882 पर आ गया। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,46,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,72,000 रुपए प्रति किलो है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। राजधानी रांची और पलामू समेत राज्य के कई जिलों में आज तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। इस बदलाव से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ऊपर 2 टर्फ लाइनें सक्रिय होने के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। आज नई दिल्ली में मॉनसून 2026 के द्वितीय चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान पर मीडिया को जानकारी देते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर एम रविचंद्रन ने बताया कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा औसतम दीर्घकालिक पूर्वानुमान का 90% रहने की संभावना है।
2: 2026 के मानसून ऋतु जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। ये सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94 to 106%। इसके साथ साथ

0: मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है।
1: राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए हॉकी झारखंड ने एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था अब राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को हॉकी की बारीकियां सिखाने के लिए विशेष अभियान शुरू करेगी। इसके तहत स्कूल स्तर पर ही बच्चों की पहचान की जाएगी और उन्हें अनुभवी कोच के जरिए ट्रेनिंग दी जाएगी। हॉकी झारखंड की महासचिव विजय शंकर सिंह ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को तराशना है ताकि वे आगे चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य का नाम रोशन कर सके।
2: इस जिला में ये अभियान और तेज करेंगे जिसमें कि छोटे बच्चे से मतलब 9 साल से हम स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे को एक हॉकी झारखंड का प्लेटफॉर्म पर लाकर रखेंगे कि उनको आगे कभी दिक्कत नहीं हो।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज नगर विकास और पथ निर्माण विभाग की करेंगे समीक्षा। राज्य में चल रहे फ्लाईओवर, सड़क और शहरी आवास प्रोजेक्ट्स का लेंगे हिसाब किताब। डीजीपी की कानून व्यवस्था पर आज उच्च स्तरीय बैठक। सभी जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ कर रही है समीक्षा। अपराधियों और उग्रवादियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर सांसद निशिकांत दुबे ने दी बड़ी सौगात। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 24 घंटे मुफ्त चलेंगी 7 हाईटेक नमो एम्बुलेंस। राज्य में आंधी बारिश के कारण गर्मी से मिली राहत। भारतीय मौसम विभाग ने देश में इस साल जून से सितंबर के दौरान कम मानसून का जताया अनुमान। और राज्य के सभी 24 जिलों में बच्चों को मिलेगी हॉकी की ट्रेनिंग। ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल स्तर पर शुरू होगा विशेष हॉकी प्रशिक्षण अभियान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। वक्त है उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अनुरंजनी का। इसमें आज आप सुनेंगे राग देव गांधार गिरिजा देवी से।

कर रहे थे बाजारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाजार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल,

बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा आ जाएगा। और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम पर्वत से ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजार

विचारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए, जी हाँ। और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है, और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है, और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है, और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर, जी हाँ। और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहां से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहां पर लकड़ी के भी काफी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफी पहले घूमी हूँ तो काफी कुछ लिया है वहां से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीजें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मजा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है, और वहां पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंचाते रहिए, और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए, जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाजारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाजार अजमेर के डिग्गी बाजार, नाला बाजार, दरगाह बाजार, नया बाजार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाजार है, सांगानेर बाजार, पवन बाजार, आज़ाद बाजार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर

जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है, जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है, जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुंच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नजदीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है, बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मजा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहां मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहां पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है, कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सबने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो

ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं। स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाजार है। और साथ ही साथ बाजारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाजार माया बाजार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाजार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाजार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या कम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत

0: Haryana, Punjab, Bihar, Odisha, Chhattisgarh, Gujarat and Andhra Pradesh, and isolated regions of Maharashtra, Telangana, Himachal Pradesh and Tamil Nadu.
1: In sports, at the 2026 Asian Under 20 Athletics Championships, stellar results were recorded in multiple track and field events involving Indian athletes. In the women's 100 meters, Neepam won the bronze medal with a timing of 11.62 seconds. She became the first Indian woman in 25 years to win a medal in this event at the championships. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs all high courts to pronounce judgment within 3 months of reserving order. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. PM Surya Ghar scheme achieves major milestone as 40 lakh households embrace rooftop solar. IMD predicts below normal monsoon rainfall in the country and above normal heatwave conditions in several states during June. And Indian sprinter Neepam wins bronze in women's 100 meter at Under 20 Asian Athletics Championships in Hong Kong. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
4: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
2: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
4: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी

0: सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
1: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं, एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि ये आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

0: का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवर्जन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काकामिगाहारा में कजाकिस्तान

0: पाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

फिल्म चोरी चोरी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। शैलेंद्र ने इसे लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।

0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध।

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जय भारती। आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। उन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की।
1: आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए व्यवस्थ कर दिया था। यह भारत के अब तक लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी सहमति की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से आज झारखंड स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल ने रांची स्थित लोकभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान श्री शुक्ल ने राज्यपाल को राज्य के अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने झारखंड में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू करने की दिशा में पहल किए जाने का भी आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन जारी है। कांग्रेस चाहती है कि 2 सीटों में से 1 सीट गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में उसे मिले। इसी सिलसिले में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी आज रांची पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे।
2: चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के

0: ये राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में दे सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहे, हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में तो झारखंडी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन में तुष्टीकरण, कमीशनखोरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियों से खुलासे के बाद केवल इकरारनामा रद्द करना सरकार की जवाबदेही से बचने का प्रयास है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, स्वास्थ्य सचिव अजय सिंह समेत संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, प्राथमिकी दर्ज करने और पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दाखिल कर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रांची केंद्र। मैं हूँ विनीता आपके साथ और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम नॉन स्टॉप अंताक्षरी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

दोस्तों कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है, उसे ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराए कि आप उनके लिए जरूरी है। तो इन बातों के साथ

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत।
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया।
0: हम्म,
1: अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी

0: आपका बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप सिर्फ नाड़ी देखकर आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ, उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या
1: नहीं? दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं, और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है तो यादों की बारात का, चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही। मैम
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के भी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: मैम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है। हाँ
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं।
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं BSc फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
1: हाँ।
0: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
1: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
0: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या हैं? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशंस लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा।
1: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और

0: वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।
2: लकड़ी

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी। हाउस
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: वाइफ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं
1: जी
0: ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी। दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी। वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट पे ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े,
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है, और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, तब आपका
1: जी।
0: पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी, इधर लेट जाती हूँ बस।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा, यम्मा।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी,
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में
1: जी
0: अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी
1: जी
0: होता है और आप बहुत अच्छा काम
1: जी
0: कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
1: जी
0: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से
1: जी भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे। हेलो
0: आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन सा है?
1: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
0: ये बताइए कि गीत
1: जी,
0: कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे।
0: ये
1: अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
0: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम
1: हाँ
0: नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मतलब ऐसा लगता है कि सब मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा था।
1: जी, मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ मैं जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं?
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे ज्यादा?
1: जी पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी
1: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
0: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है,
1: जी,
0: बहुत अच्छी बात है। एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
1: बिल्कुल जी।
0: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
1: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
0: जी
1: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
0: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
1: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवास दीवाना,
0: रफी साहब
1: रफी
0: का गाया
1: साहब।
0: हुआ।
1: जी,
0: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 02240024662, 02228670288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 02240024662। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02228702888। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

समाचार। नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। उन्होंने इस कार्य को सुचारू रूप से संपन्न कराने में सभी से सहयोग की अपील भी की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से बीएलओ घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि दावा और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी आज रांची पहुंचे। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और कांग्रेस की दावेदारी पेश करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने 108 एम्बुलेंस सेवा संचालन में तुष्टीकरण, कमीशनखोरी और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ियों के खुलासे के बाद केवल इकरारनामा रद्द करना सरकार की जवाबदेही से बचने का प्रयास है। उन्होंने पूरे मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने की मांग की है। जमशेदपुर में टाटा लीज नवीकरण को लेकर विस्थापित आदिवासी और मूलवासी परिवारों का मुद्दा फिर गर्मा गया है। झारखंड मूलवासी अधिकार मंच ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि टाटा कंपनी के लीज नवीकरण से पहले विस्थापित परिवारों को उनका अधिकार दिया जाए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और

दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। रामनारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने। और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते, और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाती।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन अंगुलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा, व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

0: कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।
1: फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ।

0: विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम आर्क, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून से BLO घर घर जाकर मैप्ड और अनमैप्ड दोनों प्रकार के मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे। रांची पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के स्टेट चीफ और 10 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी अमृत होरो उर्फ मिचो उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया है। रांची के SSP राकेश रंजन ने बताया कि अमृत होरो अपने साथियों के साथ किसी बड़ी नक्सली घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ओमकार नाथ चौधरी की अदालत ने छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया के विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। नवीन केडिया ने अदालत में याचिका दाखिल कर लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी याचिका अस्वीकार कर दी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर PIB और केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने और जागरूकता फैलाने की शपथ ली। कार्यक्रम में तंबाकू एवं निकोटीन उत्पादों के दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक कर तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: दर्द दिल का चिराग गोया बड़ी मुश्किल से जलाया है, आज फिर बेताबियों में खुद को घिरा पाया है। मोहब्बत के नशे मन में उनके कदमों के निशान ढूंढते हैं, फूलों में ओस की नाजुकी नगमों में तराना ढूंढते हैं। दिल के आंगन में मेरे चुपके से आता है कौन, मेरा सब्र हर घड़ी यूं आजमाता है कौन।

ये इंतजार भी अजीब शय है, हर पल दिल उनके हुजूर ही रहता है। खास कुछ बेताबियों के निशान देखे कहीं कहीं हमने, है चांदनी के शरारों सा शफाक हुस्न उनका। कलियों की सादगी, कांधों पे करवटें लेती जुल्फें, लबों पे मुस्कुराहट, तो भला फिर ऐसी तस्वीर कहाँ।

ये ख्वाब नहीं, अफसाना है, हकीकत है। दो घड़ी मिल बैठें, चांद से आंखें मिलाएं, चलो कुछ देर के लिए दुनिया से जुदा हो जाएं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। छाया गीत कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। ये खुशबू ए नसीम, ये सितारों की रोशनी, ये शबनम के कतरे, ये फूलों की बहारें हैं फिजाओं में, ये नजारे जैसे चनार के पत्तों पे लिखी मोहब्बत की कोई इबारत हो। क्या जानिए क्या दिल का हाल होता है, बूंद जब लरसती है बादलों की घटाओं से।
1: न झटको जुल्फ से।

की मुस्कुराहट की कसम खा के ये हवाएं चलती हैं, शबनम ने इन्हीं होठों से जरूर ताजगी चुराई होगी, गुलों ने हवा की लाली आपसे ही पाई होगी, रात फूलों में भंवरों का कैद हो जाना, चुपके से चांद का तकना, मोहब्बत शय ही कुछ ऐसी है, तेरा मगरूर हो जाना, मेरा मशहूर हो जाना।

कार्यक्रमों का ग्रामीणों एवं कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम खेतीबारी शाम 6:30 का समय है। कृषि उत्पाद एवं ग्रामीण विकास पर आधारित कार्यक्रम ग्रामीण सभा शाम 6:55 पर हम शामिल होंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में और शाम 7 बजे सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले में आजकल। हमारे रांची केंद्र से 7:15 पर हम पेश करेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग अपने डाल्टनगंज केंद्र से। रात्रि 8:00 का समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट से का और 8:30 पर आप सुनेंगे कवाली का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 8:45 पर हम शामिल होंगे अपने रांची केंद्र के प्रसारण में, क्षमा करेंगे अपने दिल्ली केंद्र के प्रसारण में, और सुनेंगे हिंदी में समाचार। रात्रि 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार। ये तीनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 9:30 का समय होगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रमों का और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 11:00 का समय है हिंदी में समाचार का और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। और हमारी आज की सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी अभी की सभा में पेश होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, कृपया प्रतीक्षा करें।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम घर आंगन। घर आंगन कार्यक्रम की आइए शुरुआत करते हैं एक वार्ता के साथ। वार्ता का विषय है हिंदी का आधुनिक यथार्थ। वार्ताकार है अनीता कुमारी।

सांस्कृतिक चेतना का दर्पण होता है। आधुनिक काल में समाज में तेजी से परिवर्तन हुए हैं, जिसमें औद्योगिक क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा का प्रसार, तकनीकी प्रगति ने मनुष्य के जीवन को नई दिशा दी। हिंदी साहित्य ने इस परिवर्तन को अपने भीतर आत्मसात किया और जीवन की कठोर सच्चाइयों को उजागर किया। यथार्थ का अर्थ ही जीवन को उनकी सच्ची और वास्तविक अवस्था में देखना और प्रस्तुत करना है। आधुनिक यथार्थ केवल बाहरी जीवन की झलक नहीं है, बल्कि उसमें व्यक्ति की मानसिक पीड़ा, सामाजिक विषमताएं, आर्थिक संघर्ष, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांस्कृतिक संकट भी शामिल है। आधुनिक यथार्थ का साहित्य कल्पना की उड़ानों से अधिक अनुभव और सत्य की अभिव्यक्ति पर जोर देता है। हिंदी साहित्य के पूर्व कालों में कल्पना भक्ति और अलंकारिता का महत्व अधिक था, परंतु आधुनिक हिंदी साहित्य में यथार्थ में केंद्रीय स्थान ग्रहण किया। प्रेमचंद्र ने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से किसान, मजदूर, स्त्री, दलित वर्ग की पीड़ा को यथार्थ के रूप में प्रस्तुत किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ का गहन चित्रण मिलता है, जैसे जातिगत भेदभाव और छुआछूत के विरुद्ध आवाज, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, अधिकारों के प्रश्न, ग्रामीण जीवन की कठिनाइयाँ और शहरी जीवन का संघर्ष, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती स्वाय, इन सब पहलुओं को साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। भारत की आर्थिक परिस्थितियां सदैव साहित्य का विषय रही है। आधुनिक यथार्थ में किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, मजदूरों का शोषण और गरीबों की व्यथा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रेमचंद्र के गोदान से लेकर समकालीन उपन्यासों तक किसान और श्रमिक वर्ग की पीड़ा साहित्य का केंद्रीय विषय रही है। स्वतंत्रता संग्राम के दौर से लेकर आज के समय तक राजनीतिक परिस्थितियों का असर हिंदी साहित्य पर गहरा पड़ा है, जिसमें स्वतंत्रता की आकांक्षा और संघर्ष, स्वतंत्रता के बाद भ्रष्टाचार, घोटाले और राजनीति के अपराध का प्रवेश, लोकतंत्र की कमजोरियां और जनता की निराशा, इन सब पहलुओं को आधुनिक साहित्यकारों ने खुलकर चित्रित किया। आधुनिक युग में संस्कृति का प्रभाव, पारंपरिक मूल्यों का हर्ष और नैतिक पतन स्पष्ट दिखाई देता है। साहित्यकारों ने दिखाया कि कैसे भौतिकवाद की आंधी दौड़ ने रिश्ते को प्रभावित किया और मानवीय संवेदनाओं को कमजोर हुई। नागार्जुन ने किसान और मजदूर की आवाज़ को स्वर दिया। मुक्तिबोध ने व्यक्ति की मानसिक विडम्बना और समाज की सच्चाइयों का चित्रण किया। अज्ञेय ने आधुनिक मनुष्य के भीतर की बेचैनी और तलाश को सामने रखा। आज का हिंदी साहित्य सूचना तकनीकी, पर्यावरण संकट, प्रवासी भारतीयों की समस्याएं और स्त्री, दलित, आदिवासी विमर्श को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर रहा है। यह यथार्थ अधिक व्यापक और गहन है। कुछ आलोचकों का मत है कि आधुनिक यथार्थ का साहित्य अत्यधिक कटु और निराशावादी है, किंतु यह जीवन की सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ता। यह साहित्य हमें जागरूक करता है और समाज सुधार की प्रेरणा देता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक यथार्थ जीवन की सभी पहलुओं को गहराई से प्रस्तुत करता है। यह केवल समस्याओं को उजागर नहीं करता, बल्कि समाधान की राह भी सुझाता है। आधुनिक यथार्थ हमें सचेत कराता है कि साहित्य केवल कल्पना का मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज के सुधार का सशक्त साधन है। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। जिस प्रकार दर्पण सामने खड़े व्यक्ति की वास्तविकता छवि दिखाता है, उसी प्रकार साहित्य भी अपने युग की परिस्थितियों, समस्याओं और प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करता है। हिंदी साहित्य का विकास विभिन्न चरणों से गुजरते हुए आधुनिक काल में एक नई दिशा प्राप्त करता है। यह दिशा यथार्थवाद की आधुनिक हिंदी साहित्य में कल्पना, अलंकार और आदर्शवाद की जगह यथार्थ को प्रमुखता दी गई है। आधुनिक हिंदी साहित्य में सामाजिक यथार्थ का गहन चित्रण किया दिखाई देता है। जातिगत भेदभाव और छुआछूत की समस्याओं को कई लेखकों ने उठाया। दलित साहित्य ने इसे सबसे मुख्य रूप से प्रस्तुत किया। स्त्री की स्थिति और अधिकार भी साहित्य का केंद्रीय विषय बने। आज स्त्रियां केवल त्याग और सेवा की प्रतीक नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्णय की
आकांक्षा रखने वाली स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में सामने आई। ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याएं भी साहित्य में आई। गांव में किसानों की गरीबी और कर्ज का बोझ तथा शहरों में बेरोजगारी, महंगाई और अकेलेपन की समस्या आधुनिक यथार्थ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रकार आधुनिक हिंदी साहित्य में समाज की जटिलताओं को पूरे साहस और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया है। संसार में विविध वस्तुएं हैं जिनमें कुछ भी मानव परिचित है और कुछ से अपरिचित। कुछ वस्तुएं तो ऐसी है जिनका मानव से कोई संबंध नहीं है, फिर भी उन्हें देखकर उनके मन में कौतूहल का होना स्वाभाविक सी बात है। उन वस्तुओं के भयंकर रूप को देखकर यदि यह भयाक्रांत होता है तो उनके सुंदर रूप को देखकर वह आकर्षित और मोहित भी होता है। यथार्थवाद इन वस्तुओं की पहचान को बताता है और यह उनसे परिचित कराता है और एक ऐसा परिवेश अथवा वातावरण को तैयार करता है जिससे उन वस्तुओं से भली भांति परिचित होकर मानव अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। यथार्थवाद भारत की राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है जो ज्ञान, परंपराओं और पहचान को संरक्षित करती है। इसका महत्व शिक्षा, साहित्य, व्यापार और मनोरंजन में है और भारत एक एकीकृत शक्ति के रूप में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है जो भारत के बढ़ते प्रभाव और सांस्कृतिक आदान प्रदान में योगदान करती है। हिंदी साहित्य का एक विशाल भंडार जो ज्ञान से भरा हुआ है और समाज के विकास में योगदान कर सकता है, दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा होने के नाते हिंदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भारत को बढ़ाती है और यह लोगों को अपने विचारों, भावनाओं और सपनों को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करती है जो इसे कलात्मक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भाषा बनाती है। कथा साहित्य ने आधुनिक यथार्थ को व्यापक और गहन बनाया है। प्रेमचंद किसानों और गरीबों के जीवन को यथार्थवादी चित्रण किया। यशपाल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को उकेरे। नई कहानी आंदोलन मोहन, राकेश और निर्मल वर्मा ने व्यक्ति के अकेलेपन और रिश्तों की जटिलताओं को सामने रखा। समकालीन कथाकार स्त्री विमर्श, दलित जीवन, प्रवासी अनुभव और डिजिटल युग की समस्याएं अब कक्षा साहित्य का हिस्सा है। आज के दौर में यथार्थ और भी व्यापक हो गया है। पर्यावरण संकट, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों का संकट है। प्रवासी जीवन, विदेशी धरती पर भारतीयों की समस्याएं, नए विमर्श, स्त्री, दलित और आदिवासी साहित्य का उदय, डिजिटल क्रांति, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने साहित्य के विषयों को नया व्यायाम दिया। कुछ आलोचकों का मत है कि आधुनिक यथार्थ का साहित्य समस्याओं का चित्रण करता है पर समाधान नहीं देता, परंतु यह दृष्टिकोण अधूरा है। साहित्यकार का कार्य है समाज की वास्तविकताओं को उजागर करना ताकि पाठक स्वयं विचार कर सके और समाज में परिवर्तन लाया जा सके। आधुनिक यथार्थ इसी भूमिका को निभाता है। अंततः कहा जा सकता है कि हिंदी का आधुनिक यथार्थ साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें व्यक्ति, समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक के सभी पहलुओं का सजीव चित्रण मिलता है। यह साहित्य हमें केवल मनोरंजन नहीं देता बल्कि जीवन के प्रति संवेदनशील और जागरूक भी बनाता है। आधुनिक यथार्थ हमें यह सिखाता है कि साहित्य केवल कल्पना था या सौंदर्य का साधन नहीं बल्कि समाज सुधार और जीवन मार्गदर्शन का भी माध्यम है। यही हिंदी साहित्य की वास्तविक शक्ति है और उसकी अस्थायी प्रासंगिकता भी।

के यथार्थ। हिंदी साहित्य का विकास और समाज की परिस्थितियों के साथ होता रहा है। प्रत्येक युग का साहित्य उस युग की सामाजिक राजनैतिक और

और अब आइए हम लोग बात करेंगे साइबर अपराध और आम नागरिक इससे कैसे सुरक्षा प्राप्त करें। साइबर क्राइम जो है आज के डेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और हर व्यक्ति साइबर क्राइम से परेशान है। आए दिन साइबर फ्रॉड का कॉल आते रहता है और उसमें कई बार लोग फंस जाते हैं, कई तरह के लालच दिए जाते हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आप इस चीज़ को जानें कि आपकी निजी जानकारियां कहीं भी आपको शेयर नहीं करनी है, चाहे वो कोई कितनी भी लालच क्यों न दे, क्योंकि बैंक और अन्य संगठन भी जो भी हैं वो हमेशा इस बात के लिए आगाह करते रहते हैं कि उनकी ओर से कहीं कोई कॉल नहीं आता और आपको भेजे गए OTP को कहीं नहीं शेयर करना है। और साइबर अपराधी जो है विभिन्न प्रकार से आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम सबों को जागरूकता ही इससे बचने का एकमात्र साधन हो सकता है। और सब हर राज्य की पुलिस जो है अपने यहाँ एक स्पेशल साइबर थाना की व्यवस्था की गई है, जिसमें साइबर क्राइम से मामले जुड़े होते हैं और साइबर अपराध की एक शाखा है। हर पुलिस में, हर राज्य की पुलिस, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हर जगह की पुलिस ने अपने एक आधिकारिक वेबसाइट भी बनाई है जिस पर आप उनसे संबंधित शिकायत कर सकते हैं। आम नागरिकों को इससे सुरक्षा, जैसे आजकल बैंक में भी लोग ग्रीन पिन देते हैं और ज़्यादातर बैंक में भीड़ न लगे इसके लिए ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा दी गई है, लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल करने के साथ साथ आपको इनकी पूरी जानकारी भी रखनी होगी कि कहीं से भी कॉल आए या आपसे किसी प्रकार की जानकारी मांगी गई कि आप इसको, इस तरह की जानकारी हमें दें, आपके पास लॉटरी में इतने रुपए आए हुए हैं, काफ़ी बड़ी रकम आई हुई है और आपकी वजह से ये फंसा हुआ है, आप कहीं 5,000 भेज दें, 10,000 भेज दें, तो ऐसा आपको नहीं करना है और किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। कई बार साइबर अपराधी जो है कोई लिंक भेजते हैं कि इस पर आप क्लिक करें और उसके वजह से जाके आप इस पर अपडेट कर दें, लेकिन आप जैसे ही उस लिंक पर जाते हैं और किसी तरह की जानकारियां अपडेट करते हैं तो आपका मोबाइल हैक हो जाता है और आपके सारे क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपके जितने भी पासवर्ड हो या अन्य जानकारियां आपने मोबाइल में सेव करके रखी है, वो सारी की सारी वहां चली जाती है और उसके बाद आपका जो भी डेटा मोबाइल में है उसके ज़रिए वो साइबर अपराधी आपके पैसे उड़ा लेते हैं और विभिन्न प्रकार की अन्य चीज़ें भी करते हैं। तो इस तरीके से साइबर अपराध से आम नागरिक तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके अंदर जागरूकता होगी और जानकारी पूरी तरह से वो जानकार बनेगा, क्योंकि अगर आप जानकार नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर फंस जाएंगे, क्योंकि साइबर अपराधी भी आए दिन नए नए तरीके ईजाद करते हैं। आपको उस समय आपको अपना दिमाग, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई करना होगा और उसी तरह से उसके लिए आंसर करना होगा, क्योंकि ये नहीं है, ये शुरू से ही बताया नहीं जा सकता कि कितने तरीके से कोई भी अपराधी अपराध कर सकता है। आपको सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा और आपको जानकारी, ये तभी संभव है जब आप विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ रखेंगे। और इसी के साथ ही हम लोग अभी इस विषय पर बात करते हुए अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं लू यानी कि गर्मी से बचाव के। गर्मी बहुत अपने चरम सीमा पर है, हालांकि आज थोड़ी मौसम में बदलाव आया है और सुबह से थोड़ी नरमी है, लेकिन उसके बावजूद भी गर्मी से हम सबों को सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ख़तरनाक जाड़ा होता है उतना ही खतरनाक गर्मी भी होता है, किसी को भी कम नहीं कहा जा सकता। लू के प्रकोप में आने से किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए अधिक से अधिक तरल पदार्थ का सेवन करें, शरीर में पानी की मात्रा को कम ना होने दें, आप नमक और चीनी दोनों की संतुलित मात्रा में आप उसे लें, और ख़ास तौर से जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, डायबिटिक लोग, चीनी का सेवन अपने हिसाब से करें। और इसी तरीके से आप अपने संतुलित आहार रखें, अपने खान पान और पानी शरीर में की मात्रा को मेंटेन करें और लू से बचें, संभव हो तो ज़्यादा जब गर्मी हो, अगर बहुत अत्यधिक ज़रूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर भी ना निकलें, पूरे कपड़े अच्छी तरीके से पहने, फुल
वहाँ के कपड़े पहन कर ही लू के समय में निकलना चाहिए। लोगों को लगता है कि गर्मी है, हम पतले और छोटे कपड़े पहनेंगे तो उससे गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गर्मी में भी आपका बदन ढका होना चाहिए ताकि लू के प्रकोप से आप बच सकें। अब आइए हम लोग कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और अब तो समय हो चुका है इस कार्यक्रम का, लेकिन चलते चलते आइए सुनते हैं एक गीत, और उसी गीत के साथ कार्यक्रम घर आंगन से हमें इजाज़त दें आप।

0: प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पलामू पर प्रमंडल के बूढ़ा पहाड़ इलाके में पहली बार जनगणना टीम बिना किसी भय के पहुंच सकेगी। कभी माओवादियों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चर्चित रहे इस क्षेत्र में अब जनगणना कार्य सामान्य तरीके से शुरू हो गया है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि इस बार स्थिति पूरी तरह बदली हुई है और जनगणना कर्मियों को नक्सलियों का खतरा नहीं है। कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेजों में विश्वविद्यालय स्थानांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए कोडरमा जिले के अंगीभूत कॉलेजों को गिरिडीह स्थित सर जेसी बोस विश्वविद्यालय के बजाय हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ही संबंध रखा जाना चाहिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड में आज आई आंधी, तूफान और भारी

बारिश से बिजली व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी राजेश टोपो ने बताया कि चांदनाडीह और ठाकुरचक कब्रिस्तान के पास बिजली के कई पोल गिर गए हैं। विभाग की टीम बिजली बहाल करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सभी किसान भाई बहन बालकों बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। और किसान भाइयों, हमेशा की तरह आपके साथ हैं आज आपके भाई प्रदीप कुमार सिंह, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: आपको भी हमारा नमस्कार संतोष जी, और सभी किसान भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार।
0: और अब हम लोग बातें करते हैं खेती बाड़ी की। आज कार्यक्रम खेती बाड़ी में सर्वप्रथम हम लोग बातें करते हैं ड्रिप सिंचाई की, फव्वारा सिंचाई पद्धति की, चूँकि अब हमारे किसान भाई गर्मी को झेलेंगे,
1: क्योंकि जलस्तर नीचे जाना प्रारंभ हो चुका है, गर्मी भी अपने रंग में आने लगी है। तो उस स्थिति में चूंकि हमारा जो पलामू प्रमंडल है खासकर, और इसमें यहाँ पानी की बहुत किल्लत हो जाती है, तो जब यहाँ पानी पीने की जब समस्या होती है तो आप समझ सकते हैं कि जलस्तर तो नीचे जाता ही है, तो सिंचाई करना किसान भाइयों के लिए बहुत ही दुष्कर कार्य हो जाता है। तो जो हमारी जो पद्धति है, जो ईजाद की गई कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, ड्रिप कहें या फवारा सिंचाई पद्धति, यह जो ड्रिप सिंचाई जो सिंचाई है, यह उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मृदा के प्रकार, खेत के ढाल, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों के लिए अपनाई जा सकती है। इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है संतोष जी, वो यही है। ड्रिप विधि का सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की उच्च गुणवत्ता, रसायन व उर्वरकों का दक्ष उपयोग, जल के विलक्षण एवं अप्रवाह में कमी, खरपतवारों में कमी और जल की बचत सुनिश्चित की जा सकती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, और सबसे बड़ी बात हम आपको यह भी बताते चलें कि सिंचाई की इस विधि का उपयोग पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। सीमित जल संसाधनों और दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जल की आवश्यकता और पर्यावरण की समस्या को कम करने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक निसंदेह बहुत कारगर सिद्ध होगी। और जिन क्षेत्रों में भूमि को समतल करना महंगा या कठिन हो चुका है, जो असंभव मान लीजिए, उन क्षेत्रों में व्यावसायिक फसलों को सफलतापूर्वक उगाने के लिए ड्रिप सिंचाई तकनीक सर्वाधिक उपयुक्त भी है।
1: ड्रिप तंत्र एक अधिक आवृत्ति वाला ऐसा सिंचाई यंत्र है जिसमें जल को पौधों के मूल क्षेत्र के आसपास दिया जाता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा पौधे को आवश्यकता अनुसार जल दिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई के द्वारा 30-40% तक उर्वरकों की भी बचत की जा सकती है। 70% तक जल की बचत के साथ उपज में 100% तक वृद्धि हो सकती है। इसके अतिरिक्त खरपतवारों में काफ़ी कमी, कीट व्याधियों के प्रकोप में कमी, कम ऊर्जा की खपत और उत्पाद की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो।
0: किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई तंत्र एक उत्सर्जन युक्त सहित पाइपों का एक जाल होता है। ड्रिप तंत्र में मुख्य, उपमुख्य तथा लेटरल पाइप होते हैं, और लेटरल छोटे प्लास्टिक पाइप होते हैं जिनके साथ ड्रिपर लगे होते हैं। लेटरल पाइप को एक स्वीकार्य स्तर तक समान जल वितरण के लिए बिछाया जाता है। उपमुख्य पाइप एक नियंत्रण तंत्र की भांति कार्य करता है और जल के दबाव को समायोजित करता है।

0: किसान भाइयों, जिससे कि प्रत्येक लेटरल में जल का आवश्यक प्रवाह हो सके। तो इस प्रकार तो अगर देखा जाए तो बहुत फायदे हमें नजर आते हैं आपको ड्रिप सिंचाई में, जिसकी आवश्यकता आज हमारे सामने मुंह बाय खड़ी है किसान भाइयों, और अब है कि हम इसका अच्छी तरह से उपयोग करें।
1: देखिए, ड्रिप जो सिंचाई है संतोष जी, यह कृषि वैज्ञानिकों का एक तरह से हम कहेंगे किसानों के लिए जो इजाद की गई है, एक वरदान से कम नहीं है। और इसके लाभ भी कई सारे हैं, यही नहीं कि सिर्फ पानी की ही बचत करते, इसके लाभ भी कई सारे हैं। जैसे उत्पादकता और गुणवत्ता की अगर बात हम लोग करते हैं, तो जो टपक सिंचाई है, जो ड्रिप सिंचाई है, इसमें पेड़ पौधों को प्रतिदिन जरूरी मात्रा में पानी मिलता है। तो सिंचाई कर रहे थे, एक बार आपने सिंचाई कर दी, पूरे खेत को पटा दिया, उसके बाद फिर सिंचाई मिल नहीं पाती है। तो इसमें है कि आपको प्रतिदिन आप इसमें जब जब जिस फसल को जितनी आवश्यकता पानी की हो, उतनी आवश्यकता एकदम जिसे नहीं होता नाप तोल करके मिल जाना, अपना आहार जितना आवश्यकता है, जितनी भी उसको जरूरत है उतनी आप सिंचाई उसको दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है। इसमें जिस तरह से उसको चाहिए उसी तरह से आप उसको देते हैं
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात यह है। और इसके जिस इस पद्धति में है कि फसलों की बढ़ोतरी व उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल, सब्जी और अन्य फसलों के उत्पादन में 20% से लेकर 50% तक बढ़ोतरी संभव है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई द्वारा 30-60% तक सिंचाई पानी की आप बचत कर सकते हैं। उबड़ खाबड़ क्षारयुक्त बंजर जमीन, शुष्क खेती वाली और पानी के कम रिसाव वाली जमीन, और अल्प वर्षा की क्षारयुक्त जमीन और समुद्र तटीय जमीन की खेती के लिए ये उपयोग में लाई जा सकती है।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताया कि जो वैसी जमीन जिसमें सिंचाई करना भी कठिन है, वैसी भी जमीन में आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। और इसमें जब बात हम लोग करें रासायनिक खाद के बारे में, तो फर्टिगेशन से पोषक तत्व तो बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुँचाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे पोषक तत्वों का उपयुक्त इस्तेमाल कर पाते हैं तथा प्रयोग किए गए उर्वरकों में होने वाले विभिन्न नुकसान कम होते हैं, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है। इस पद्धति के द्वारा 30-45% तक की रासायनिक खाद की बचत भी की जाती है।
0: जी हाँ किसान भाइयों, टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिया जाता है। आसपास की जमीन सूखी रहने से अनावश्यक खरपतवार से भी आप बच जाते हैं, और इससे जमीन के सभी पौष्टिक तत्व केवल फसल को मिलते हैं।
1: सबसे बड़ी बात यही है इस में कि आपको सीधे जड़ को पानी मिलता है, आसपास को पानी नहीं मिलता है, इसलिए खरपतवार नहीं के बराबर हो पाते हैं। और फसल में कीट और रोग का जो प्रभाव होता है इस सिंचाई पद्धति के उपयोग के कारण, जड़ के क्षेत्र को छोड़कर बाकी भाग सूखा रहने से निराई गुड़ाई खुदाई कटाई आदि का काम भी बेहतर ढंग से किए जा सकते हैं, जिससे मजदूरी समय और पैसे की भी बचत होती है।
0: जी किसान भाइयों, प्रतिदिन फसल को पानी देने से पहले पंप चालू करके 5 मिनट तक बैकवाश करना बहुत आवश्यक है किसान भाइयों, इसलिए कि संयंत्र को आप पटवन से पहले उसे आप जरूर चेक कर लें।
1: उससे क्या होता है कि सामान्य प्रवाह जो है वह उल्टी दिशा में ऊंचे दबाव से पानी छोड़े जाने की यह पद्धति है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि यदि पहले दिन सैंड फिल्टर में कहीं किसी तरह की गंदगी अगर जमा होती है तो वह पानी के साथ बाहर आ जाती है और उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। और फिल्टर की सफाई होने के बाद हेडर असेंबली

0: पेट्रोल में से पानी टपक तो नहीं रहा है, इन छोटी छोटी तमाम बातों की जांच इसलिए जरूरी है कि समस्या का निवारण तुरंत संभव हो सके।
1: और जो टपक संयंत्र के सभी ट्रिपर्स को पानी ठीक तरह से गिरता है या नहीं, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ जमीन का गीलापन सभी जगह एक जैसा है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। सही जगह लगा है कि नहीं, यह भी देखना चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ जो लैटरल इनलाइन का अंतिम छोर खोलकर पानी को एक दो मिनट यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। तो यह जो हमारी जो पद्धति है, जो फवारा तकनीक जिसे कहते हैं हम लोग, या टपक सिंचाई कहते हैं, इसे बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, किसी भी नाम से आप इसे बुला सकते हैं, कह सकते हैं, तो किसानों के लिए पानी के बचत के साथ साथ उनके उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी और उनके जो उत्पाद हैं वह गुणवत्तापूर्ण होते हैं, यही इसकी खासियत है।
0: जी, तो किसान भाइयों, ये तो हुई बातें ड्रिप सिंचाई की, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति की। और अब
2: किसान भाइयों, जैविक खेती सुदृढ़ खेती है। जैविक खेती अगर हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं, भूमि में जल संचयन की क्षमता को बढ़ाते हैं, उसके साथ हम गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करते हैं। जैविक खाद का हमें समुचित उपयोग किस प्रकार करनी चाहिए, किस प्रकार हमें देख रेख करनी चाहिए, किस प्रकार ध्यान देने चाहिए, इन तमाम बातों पर आज जानकारी साझा करेंगे। अभिषेक पटेल, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
3: नमस्कार।
2: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि जैविक खाद क्या है।
3: जैविक खाद जो कि हमारा गोबर का फाड़ा हुआ बनाया जाता है, उसको बनाने के लिए सर्वप्रथम इसको हम बनाते कैसे हैं? इसको हम बता रहे हैं कि इसका एक पिट तैयार करना रहता है, 3 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, अच्छा। 1 मीटर गहरा।
2: अच्छा।
3: इसका पिट या तो आप प्लास्टिक बना सकते हैं या तो सीमेंटेड बना सकते हैं, उसको बना लीजिए। फिर इसमें आप एक लेयर, पतला लेयर, उसमें लगभग 3 से 4 mm मिट्टी डाल दीजिए। फिर उसके बाद फड़ा हुआ गोबर उसमें डालिए। गोबर डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि लाए डायरेक्ट डाल दीजिए, उसको लाइए एक जगह अलग से रखिए, 1-2 रोज के बाद उसको उसमें गड्ढे में डालिए। फिर उसके बाद आता है कछुआ, ट्राइकोडर्मा, तो उसको उसमें एक गड्ढे में लगभग 1 से 1.5 kg उसको कछुआ के डाला जाता है। उसके बाद आपका फड़ा हुआ किचन का सामान हुआ, सब्जी फल फूल या तो पुआल हुआ, ये सब कुछ डालिए, फिर गोबर डालिए, इसी तरीके तह बाय तह करते हुए गड्ढे को पूरी तरीके से भर दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, या तो भीगा हुआ बोरा या जूट का कुछ भी हो उसे ढक दीजिए।
2: अच्छा।
3: तो 2 से 3 मंथ के बाद केचुआ जो भी होता है उसके अंदर, वो धीरे धीरे खाते पचाते
2: अच्छा
3: एकदम इसको बर्मी कंपोस्ट जैसा बना देता है, जैसा कि चाय के पत्ती होता है वैसा भुरभुरा हो जाता है। तो उसके बाद आप छलनी से छान लीजिए, आपका तैयार हो गया है।
2: अच्छा।
3: जैविक हमारा खाद जो होता है ये तैयार होता है इस तरीके।
2: फिर इसका इस्तेमाल करते हैं।
3: हाँ, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप खेत में, हर 3 महीने में तैयार हो जाता है।
2: अच्छा। अच्छा, समुचित उपयोग की बात जहाँ तक आती है, किस प्रकार हमारे किसान भाइयों को इसका उपयोग करना चाहिए?
3: इसका उपयोग खेती में बहुत ज्यादा हर एक तरफ किया जा सकता है, जैसे आप फसल लगा रहे हैं उसमें कर सकते हैं, बागवानी में सबसे ज्यादा इसका उपयोग बागवानी नर्सरी में सबसे ज्यादा होता है।
2: अच्छा।
3: इसका उपयोग नर्सरी में, किसी भी नर्सरी को उसको अगर नर्सरी लगा रहे हैं, उसको जिंदा रखना चाह रहे हैं, जैसे टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्चा हुआ, ये सब नर्सरी के जर्मिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें इसका आता है, बर्मी कंपोस्ट का।
2: अच्छा।
3: इसका अगर जितना मात्रा रहता है उतना अच्छा इसका जर्मिनेशन होता है, प्लस जब इसको लगाने के लिए कबारते हैं तो वो आसानी से कवर भी जाता है, नहीं तो मिट्टी रहता है मिट्टी में कवरता नहीं, जब टूट जाता है कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है।
2: अच्छा, ये भी एक बात है।
3: ये भी।
2: और क्या क्या लाभ हमारे जैविक खेती से हमारे किसान भाई प्राप्त करते हैं?
3: जैविक खेती से लाभ किसान भाई, ये इसका तो एक बार जो ऐसे गोबर खाद हुआ या तो ये बर्मी कंपोस्ट हुआ या तो करंज खली हुई, ये सब जो जितने भी जैविक है सभी का, जैसे अगर फील्ड में आप डाल रहे हैं तो इसका आप 1 साल डाल रहे हैं 2 से 3 साल इसका फायदा करते हैं, जबकि आप DAP यूरिया ये सब उपयोग करते हैं तो जब फसल है तभी काम करेगा, ये होता है। इसके साथ साथ इसके डालने से जो जल की धारण क्षमता होती है वो वृद्धि होती है। इसके साथ साथ जो
2: मैंने खेत में आपका नमी बना रहेगा
3: और जो कि धीरे धीरे देखा जाता है कि जमीन ज्यादातर ऊपर होते जा रहे हैं।
2: हाँ।
3: बहुत ज्यादा समस्या इसकी आ रही है, इसमें भी इसका काफी ज्यादा ये रोकथाम करता है।
2: अच्छा,
3: जैविक खेती से तो इससे किसान को फायदा है। अगर किसान डायरेक्ट इसको अप्लाई

0: करेंगे तो उनको थोड़ा बहुत घाटा सहना पड़ेगा। इसको धीरे धीरे करके पूर्णतया लाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पहले ही बार में पूरी तरीके से हम बर्मी कंपोस्ट या इस पे जैविक खेती पर आधारित हो जाएं। पहले 75% जैविक, 25% इनऑर्गेनिक, फिर 50, फिर धीरे धीरे घटाते जाइए, इनऑर्गेनिक को हटाते जाइए, आ जाइए टोटली ऑर्गेनिक पे। हाँ,
1: ऐसे होता है।
0: नहीं तो अगर आप डायरेक्ट वो करेंगे तो आपका उपज जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा पहली ही बार में अगर करेंगे। इसको करने के लिए कम से कम 2 या 3 साल में करेंगे तो आसानी से आपका उपज भी ज़्यादा नहीं घटेगा, जिससे कि आपको आर्थिक जो नुकसान होगा वो नहीं होगा। नहीं तो आप पहली ही बार में अप्लाई करेंगे तो उसमें आर्थिक नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है।
1: अच्छा, जैसे ये तो अनाज वाली फसलों में लोग अधिक रासायनिक खाद उपयोग कर देते हैं, तो क्या कहाँ तक ये उचित है? क्या अनाज में जैविक खेती से ही अनाज की खेती की जा सकती?
0: अनाज में जैविक खेती किया जा सकता है। जो आजकल विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही हैं ये सब इसी इनऑर्गेनिक का ही आ रहे हैं, नए नए बीमारी। जैविक खेती में क्या रहता है, पहले के जो पुराने जमाने में लोग रहते थे 70, 80, 90 साल, 100-100 साल तक जीते थे, पर आजकल 50 साल 60 साल पूजना मुश्किल पड़ जा रहा है। तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जिसका कोई निदान नहीं है। हमारे किसान कृषि वैज्ञानिक जो बताते हैं कि ये दवा है इसको इसका जो कार्य क्षमता है 10 से 15 दिन में करने का, पर जो हमारे किसान भाई है वो लेके जाते हैं भिंडी या बैंगन हुआ ये सब में 8 डालें, फिर कल फसल तोड़े, फिर परसों डालें और कंटिन्यूस डालते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इसको नहीं खा रहे हैं, वो तो कोई दूसरा खा रहा है, जबकि उसका बाया प्रोडक्ट कुछ भी बन के जो आ रहा है वो तो स्वयं भी खा रहे हो ना। तो उसमें एक बार खेत में पड़ गया तो उसका एक लेयर जो बनता है वो तो लेयर पड़ा ही रह गया। आप उसमें अगले साल धान या गेहूं लगाएंगे तो उसका तो उसमें जाएगा ही असर, तो उसको तो आप खाएं। तो इसी की वजह से है कि जो तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं जिसका अभी इलाज भी बहुत नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ज़मीन धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा ऊफर होती जा रही है, इसका सीधा प्रभाव ज़मीन को ज़्यादातर ऊफर कर देता है। एक लेयर बन जाता है, लेयर जल्दी टूटता नहीं तो
1: कठोर हो जाता है।
0: कठोर हो जाता है।
1: अच्छा, तो उस स्थिति में फिर आप सिंचाई वगैरह में भी
0: हाँ,
1: दिक्कत नहीं
0: सिंचाई
1: होगी?
0: में दिक्कत होगा, फसल लगाएंगे वो उसका जर्मिनेशन में दिक्कत होता है, वो सही जर्मिन उपज में दिक्कत होता है। तब ये होता है कि किसान जनरली जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि खाद हम कम दिए हैं, वो खाद के चक्कर में और ज़्यादा खाद देते हैं, जबकि उसे कोई वो नहीं है, उसमें कमी कुछ है, लोग कुछ दे रहे हैं। किसान जैसे अपना आदमी अपना जैसे शरीर का जांच कराते हैं, वैसे किसान भाई तो पहले तो अपना मिट्टी की जांच कराएं, मिट्टी में कौन सी चीज़ की क्या कमी है उसको देखते हुए अगर इनऑर्गेनिक में दे रहे हैं तो उसमें देखें क्या उसमें कमी है। पता चल रहा है कि उसमें कमी है जिंक की, आप उसको DAP यूरिया दे रहे हैं तो आपको लगी है प्यास, आप उसको खाना खिला रहे हैं तो वो कहाँ तक खाए। तो इसी प्रकार प्लांट भी है, प्लांट को ज़रूरत है माइक्रो न्यूट्रिएंट के, आप दे रहे हैं मेजर न्यूट्रिएंट, तो उसमें वो उसको प्रॉब्लम है। अगर मिट्टी का आप जांच करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारे फील्ड में क्या चीज़ की कमी है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपका फसल जो है अच्छा होगा, उपज भी अच्छा मिलेगा।
1: गुणवत्तापूर्ण भी
0: हाँ,
1: होगा,
0: गुणवत्तापूर्ण भी रहेगा।
1: मतलब कोई हानि उससे नहीं
0: हाँ
1: पहुंचेगी।
0: हाँ
1: इसलिए
0: आप
1: मिट्टी जांच भी अति
0: हाँ
1: आवश्यक हो जाता है
0: बहुत
1: समय
0: जरूरी
1: समय
0: है, समय समय पर कराना चाहिए मिट्टी की जांच।
1: लगभग कितने अंतराल पर मिट्टी जांच कराने की आवश्यकता पड़ती है?
0: लगभग 2 से 3 साल में
1: एक
0: कराते
1: बार
0: रहिए।
1: करवाना ना
0: हाँ, करवा
1: चाहिए।
0: ही लेना चाहिए, उससे आपको पता चल जाएगा क्या कमी है, अनुसार आप अगर डालेंगे खाद या कुछ भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा।
1: जी, आप थे अभिषेक पटेल जी। आप कार्यक्रम से जुड़े और जैविक खेती से संबंधित, खाद का समुचित उपयोग से संबंधित आपने जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद।
2: आइए अब हम लोग बात करते हैं मिट्टी की जांच क्यों। हम लोग बार बार किसान भाइयों को जोर देते
1: जी
2: हैं
1: जी
2: कि,
1: बराबर सलाह देते हैं।
2: और सलाह भी देते रहते हैं कि आप हमेशा, आपने चूंकि ऐसा अक्सर देखा, जो हमारे पढ़े लिखे किसान भाई वह तो मिट्टी की जांच करा लेते हैं, लेकिन जो परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे किसान भाई जो खेती करते आ रहे हैं आज भी, वो मिट्टी की जांच कराना उचित नहीं मानते। वो समझते हैं कि पिछले वर्ष जो हमने हुआ था, इस बार इतना पैदा हुआ था, इस वर्ष कुछ कम हुआ, अगले साल थोड़ा सा बढ़ा तो अच्छा है, तो यह ख्याल दिल से निकाल दें। आप अपने खेतों से और भी बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, क्योंकि आपको जानकारी का अभाव है। आपको जब तक से यह पता नहीं होगा कि आपकी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, तब तक आप बेहतर पैदावार कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए बेहतर पैदावार जो चूँकि आप मेहनत करते हैं, आपका

0: श्रम लगता है, आपकी पूंजी लगती है, आपका समय लगता है, तो उसका लाभ आप लें इसके लिए आवश्यक है कि आप सर्वप्रथम मिट्टी की जांच कराएं। पोषक तत्वों का अधिकांश भाग पौधे मिट्टी से ही प्राप्त करते हैं, और जब इन तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे खाद एवं उर्वरक डालकर पूरा करते हैं। सभी मिट्टियां एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी उर्वरता का अपना स्तर होता है तथा उनके गुण दोष अलग होते हैं, इसलिए फसल के साथ मिट्टी के अनुसार भी उर्वरक का उपयोग और उनकी मात्रा बदल सकती है। इसलिए किसान भाई, फसल लेने से पहले मिट्टी की जांच आवश्यक है।
1: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच दो समस्याओं के समाधान के लिए की जाती है। प्रथम तो ये है कि फसल एवं वृक्षों के खाद की सिफारिश को देखते हुए, दूसरा आम्लिक या क्षारीय मिट्टी में सुधार के लिए। और मिट्टी की जांच से यह पता चल जाता है कि भूमि में कौन सा तत्व उचित अधिक मात्रा में है या कम मात्रा में है। यदि आप बिना मिट्टी जांच कराए खाद डालते हैं तो संभव है कि खेत में आवश्यकता से अधिक या कम खाद डाल दी जाए, और आवश्यकता से कम खाद डालने पर कम उपज मिलेगी तथा अधिक खाद डालने पर खाद का गलत उपयोग होगा और पैसा भी बेकार जाएगा। यह भी हो सकता है कि आप उन पोषक तत्वों को कम मात्रा में दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता अधिक है, और ऐसे तत्वों जिनकी आवश्यकता कम है तो आप अधिक मात्रा में उसे उपयोग कर दे रहे हैं। तो खाद व्यवहार के संतुलित एवं उचित मात्रा क्या हो इसकी जानकारी भी नहीं होने से आपकी उत्पादन क्षमता में गिरावट आ जाएगी,
0: और इसके सही जानकारी के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। फलदार पौधों की जड़ मिट्टी में बहुत नीचे तक जाती है, यह जानने के लिए जिस खेत में आप फल के पेड़ लगाना चाहते हैं उसमें पेड़ों की जड़ों को बढ़ने एवं पूर्ण रूप से भोजन पहुंचाने की क्षमता है या नहीं, मिट्टी की जांच जरूरी है।
1: और कार्यक्रम में हम बातें करते हैं, बकरी पालन बहुत उत्तम माध्यम है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। प्रदीप जी,
0: ग्रामीणों का ये ATM भी है।
1: हाँ,
0: इसलिए बकरी पालन जो व्यवसाय है इसको अपना करके किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। इसके लिए कम पूंजी में कम जगह में इसे आसानी से किया जा सकता है। पहले शुरुआत छोटे पैमाने पर करें और जब आप इसकी खामियों को अच्छी तरह जान जाएं उसके बाद आप इसे बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं, काफ़ी व्यावसायिक स्तर पर कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी हैं हमारे जो प्रारंभ में स्टार्ट किए थे, एक दो बकरी से स्टार्ट किए थे, लेकिन आज बहुत अच्छा बिजनेस उनका चल रहा है और बहुत अच्छा लाभ कमा रहे हैं और अपने मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी तकदीर बदली है।
1: आपकी खेती अगर टूट रही है, आप बहुत बुरी हालत में हैं, तो उस समय भी बकरियां काम दे जाती हैं। बकरियों के लिए आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता अलग से नहीं पड़ती है,
0: क्योंकि छोटे बकरी भी आसानी से बाजार में उपलब्ध होते हैं, आसपास गांव घर में भी उपलब्ध होते हैं, आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बकरी खरीदें, बहुत ज़्यादा पैसा लगाएं, आप 1,000-2,000 से भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं
1: निश्चित।
0: तो उसके लिए घर का जूठन भी उनको काम आएगा, आपके खेत खलिहानों में वो चर करके भी बड़ी हो जाएंगी। तो कहने का मतलब है कि कम खर्च में ज़्यादा मुनाफा अगर देने वाली अगर कोई है तो वो बकरी ही है।
1: बिल्कुल सही।
0: और एक बकरी अपने जीवन काल में कोई, हालांकि उसकी निर्धारित सीमा नहीं है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा गया है कि 8 से 10 बार वह
1: गाभिन होती है,
0: गर्भवती होती है, तो 8 से 10 बार वो बच्चों को जन्म देती है। और खासकर जो हमारा लोकल यहाँ का जो ब्रीड है जो काफी मशहूर भी है, ब्लैक बंगाल की बकरी कम से कम 10-12 ब्यांत तक देती है बच्चे, और हर बार में देखिएगा शुरू में एक बार में एक बच्चा, कभी कभी दो दो बच्चे, कभी कभी तीन तीन बच्चे, यहाँ तक कि 4-4 बच्चे एक एक बार में देती है।
1: वाह।
0: लेकिन दो का तो औसत अधिकतर बना रहा है।
1: अधिकतर बना है, मतलब एक बार में दो बच्चा तो देना है।
0: एक बार में दो बच्चा देना है, और इन लोगों का जो कार्यकाल होता है 6.5 महीने का होता है। ऐसे हम लोग 1 साल बोलते हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखिएगा तो 13 महीने का समय लगता है। तो 13 महीने में आप 2 बार, 1 साल 1 महीने में आप 2 बार इससे बच्चे प्राप्त करते हैं। इसमें होता क्या है कि मृत्यु दर जो है बकरी पालन में, छोटे बच्चों में मृत्यु दर अधिक। कारण है कि जो ब्लैक बंगाल हमारी बकरी है उसमें दूध की मात्रा

0: जो है दूध जो देने की जो क्षमता है वो अन्य बकरियों से कम होती है। तो उसके लिए जो है कि जब आपका बच्चा छोटा है तो उस समय आपको एक महीने जो है, जब तक से वो अपने ये पर चरने फिरने के काबिल नहीं बनता तब तक एक महीने आपको देख रेख की आवश्यकता होती है। अगर उसको 15 दिन तक अगर आप माँ के दूध से अगर उसका पेट नहीं भर रहा है तो आप गाय का दूध भी उसके पिला के पाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं।
1: और कम पूंजी में ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत की जा सकती है किसान भाइयों। और रही बात रोग व्याधियों की, तो उसके लिए हमारे किसान भाई अपने पशु प्रखंड पदाधिकारी जो हैं पशुपालन उनसे संपर्क कर सकते हैं।
0: और गांव में जो पहले से बकरी पाल रहे हैं तो उनको खुद पता होता है कि बकरी में कौन सी बीमारी हो रही है, तो उसका उपचार वो लोग करते हैं।
1: किसान भाइयों, इसी के साथ अब अपने भाई संतोष कुमार
0: और प्रदीप कुमार सिंह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम खेती बाड़ी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को प्रदीप का नमस्कार।
1: आपको भी संतोष कुमार की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। प्रदीप जी,
0: अपने पर्यावरण को हमको बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, तो जितना भी आप केमिकल चीजों से दूर रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे
1: जी।
0: बुजुर्ग हुआ करते थे 100 साल जीते थे, उससे भी अधिक जीते थे, उसके पीछे कारण क्या था? यही कारण था कि वो मिलावट के चीजों से परहेज करते थे, शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। अभी धीरे धीरे चूंकि आधुनिक दौर आते गया, जमाना बदलते गया, लोगों के रहन सहन खान पान जो दिनचर्या है उसमें भी काफ़ी बदलाव
1: आ चुका,
0: तो इसी का जो दुष्परिणाम है कई तरह की समय से पहले बीमारियां, बच्चों का आँख खराब हो जाना
1: जी,
0: कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आदमी घिरा हुआ है, तो उसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। इसका दोष किसी अन्य को न दें तो ज्यादा बेहतर है।
1: बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले
1: जब बात हो रही है प्राकृतिक की, तो आज जीवामृत की बात हम करेंगे।
0: आपने बहुत अच्छा आज विषय चुना है कि जब अगर हम बात कर रहे हैं तो जीवामृत, आपने अच्छा विषय को चुना है। तो यह जो है जीवामृत बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग हमारे किसान भाई कैसे उसे अपने खेतों में करें?
1: जी बिल्कुल। तो हमारे किसान भाई को हम यह भी बताते चलें कि हरित क्रांति के बाद ही भारतीय खेती में जिस प्रकार रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है उसने हमारी भूमि की संरचना ही बदल करके रख दी है और आज बहुत ही तेजी से खेती योग्य भूमि बंजर भूमि में बदलती जा रही है और खेतों में लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से फसल की पैदावार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारे किसान भाई, हम यह बताते चलें कि अगर हम जीवामृत वगैरह का प्रयोग करते हैं, पारंपरिक रूप से खेती करते हैं, तो हम फसल को भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादित कर सकते हैं और मृदा को भी सुधार सकते हैं।
0: संतोष जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो आपने बात बताई, इन जो सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमारे किसान भाइयों के पास एकमात्र विकल्प है जैविक खेती को बढ़ावा देना, और यह समय की मांग भी है।
1: मांग भी है बिल्कुल।
0: और जीवामृत एक अत्यधिक प्रभावशाली जैविक खाद है जिसे गोबर के साथ पानी में कई और पदार्थ मिलाकर तैयार किया जाता है जो पौधों की वृद्धि और विकास में सहायक है। यह पौधों की विभिन्न रोगाणुओं से तो सुरक्षा करता ही है और साथ ही साथ जो पौधे स्वस्थ बने रहें इसका भी वह इसमें मदद करता है। जीवामृत दो प्रकार के होते हैं, पहला तरल जीवामृत और दूसरा घन जीवामृत। तरल जो जीवामृत है वह उसके बनाने की जो विधि है उसके लिए जो है आपको देसी गाय का 10 किलो गोबर और 10 लीटर गोमूत्र, पुराना सड़ा हुआ गुड़ 1 किलोग्राम और किसी भी प्रकार की दाल का 1 किलो बेसन, जैसे मूंग हो, उड़द हो, अरहर हो, चना हो, कोई भी बेसन हो, आप उसका 1 किलो उसका प्रयोग कर सकते हैं, और बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 1 किलोग्राम जिसे सजीव मिट्टी भी कहते हैं। अगर पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी न मिले तो खेत की मिट्टी प्रयोग की जा सकती है जिसमें कीटनाशक न डाले गए हों, इसका बात का भी ध्यान रखना है। और एक जो बड़ा सा पात्र जिसे हम ड्रम कहते हैं, लगभग 200 लीटर
1: जी,
0: सभी को इकट्ठा करके सबसे पहले 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 10 लीटर देसी गोमूत्र, 1 किलोग्राम पुराना सड़ा हुआ गुड़, 4 लीटर गन्ने का रस, 1 किलोग्राम किसी भी दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी एवं 200 लीटर पानी को एक मिट्टी के मटके या प्लास्टिक के ड्रम में डालकर किसी डंडे की सहायता से इस मिश्रण को अच्छी तरह हिलाएं जिससे यह पूरी तरह से आपस में मिल जाए। अब इस मटके या ड्रम को ढककर छांव में रख दें। इस मिश्रण पर सीधी धूप नहीं पड़नी चाहिए, इसका आप विशेष ख्याल रखें।
1: जी हाँ किसान भाइयों, और अगले दिन इस मिश्रण को फिर से किसी लकड़ी की सहायता से हिलाएं, 6 से 7 दिनों तक इसी कार्य को आप करते रहें, लगभग 7 दिन के बाद जीवामृत उपयोग के लिए बनकर तैयार हो जाता है और यह 200 लीटर जीवामृत 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देशी गाय कि 1 ग्राम गोबर में लगभग 500 करोड़ जीवाणु होते हैं। जब हम जीवामृत बनाने के लिए 200 लीटर पानी में डालते हैं, 200 लीटर पानी में 10 किलो गोबर डालते हैं तो लगभग 50 लाख करोड़ जीवाणु इस पानी में डालते हैं, और जीवामृत बनते समय हर 20 मिनट में इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। और जीवामृत हम 7 दिन तक किण्वन के लिए रखते हैं तो उनकी संख्या अरबों खरबों में हो जाती है। और जब हम जीवामृत भूमि में पानी के साथ डालते हैं तब भूमि में ये सूक्ष्म जीव अपने कार्य में लग जाते हैं तथा पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं।
0: अब हम बात करेंगे तरल जीवामृत को कैसे प्रयोग हम लोग करें।
1: जी,
0: तो तरल जो जीवामृत को कई प्रकार से अपने खेतों में किसान भाई आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है फसल में पानी के साथ जीवामृत देना। जिस खेत में आप सिंचाई कर रहे हैं उस खेत के लिए पानी ले जाने वाली नाली के ऊपर ड्रम को रखकर बल्ब की सहायता से जीवामृत पानी में डालें। धार इतनी रखें कि खेत में पानी लगने के साथ ही ड्रम खाली हो जाए। जीवामृत पानी में मिलाकर अपने आप फसलों की जड़ों तक पहुंचेगा। इस प्रकार जीवामृत 21 दिनों के अंतराल पर आप फसलों को दे सकते हैं। इसके अलावा खेत की जुताई के समय भी जीवामृत को मिट्टी पर भी छिड़का जा सकता है। किसान भाई इस तरल जीवामृत का फसलों पर छिड़काव भी कर सकते हैं। फलदार पेड़ों के लिए दोपहर 12 बजे के समय पेड़ों की जो छाया पड़ती है उस छाया के बाहर की कक्षा के पास 1 से 1.5 फुट पर चारों तरफ से नाली बनाकर प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत महीने में 2 बार पानी के साथ दें। जीवामृत छिड़कते समय भूमि में नमी होनी चाहिए, इसका आप खास ख्याल रखें। जीवामृत का प्रयोग किसान भाई गेहूं, मक्का, बाजरा, धान, मूंग, उड़द, कपास, सरसों, मिर्च, टमाटर, बैंगन, प्याज, मूली, गाजर आदि फसलों के साथ अन्य सभी प्रकार के फलदार पेड़ों में भी कर सकते हैं।
1: वाह। और घन जीवामृत की अगर हम बातें करें किसान भाइयों, तो घन जीवामृत बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है हम आपको बताते चलें। 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर, 5 लीटर देशी गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलोग्राम दाल का बेसन, 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी, ये सब सामग्री एकत्रित करके सबसे पहले 100 किलोग्राम देशी गाय का गोबर लें आप, और उसमें 2 किलोग्राम गुड़ तथा 2 किलोग्राम दाल का बेसन और 1 किलोग्राम सजीव मिट्टी डालकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें, और इस मिश्रण में थोड़ा थोड़ा गोमूत्र डालकर उसे अच्छी तरह मिलाकर गूंथ लें ताकि उसका घन जीवामृत बन जाए। अब इस गीले घन जीवामृत को छांव में अच्छी तरह फैलाकर सुखा लें, और सूखने के बाद इसको लकड़ी से ठोक कर बारीक कर लें, और इसे बोरों से फिर इसे बोरों में भरकर छांव में रख दें। इस प्रकार बने घन जीवामृत को आप 6 महीने तक भंडारण भी कर सकते हैं।
0: तो घन जीवामृत का प्रयोग कैसे करना है इसकी भी जानकारी आपको जरूरी है। तो घन जीवामृत को हम किसी भी समय भूमि में डाल सकते हैं। खेत की जुताई के बाद इसका प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अगर आप खेत की जुताई कर रहे हैं उस समय आप इसका प्रयोग करें। जब हम भूमि में इसे डालते हैं तो नमी मिलते ही घन जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु कोष तोड़कर पुनः अपने कार्य में लग जाते हैं। किसी भी फसल की बुआई के समय प्रति एकड़ 100 किलोग्राम जैविक खाद और 20 किलोग्राम घन जीवामृत का प्रयोग करें। इससे बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके प्रयोग से आप रासायनिक खादों से भी ज़्यादा उपज ले सकते हैं। बीज बोते समय बोने का जो औजार है उसमें 2 नालियों का बाउल लगाएं, 1 बाउल से बीज बोएं और दूसरे बाउल से यह जैविक खाद और घन जीवामृत का मिश्रण डालें। आपके इलाके में बीज बोने की जो भी विधि हो उससे ही इन दोनों की बुआई करें।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, और ये तो बातें हुई प्रदीप जी आज हमारे किसान भाइयों के साथ जीवामृत की। और किसान भाइयों आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार जी, जिनसे आज विस्तृत बातें होगी गर्मा सब्जियों की खेती में देख रेख की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार किसान बंधुओं।
1: सर्वप्रथम तो हमारे किसान भाई को बताया जाए कि गर्मा सब्जियां अभी जो जो लगा रहे हैं वो कौन कौन सी सब्जियां हैं।
2: जैसा कि हमारे पलामू क्षेत्र में देखा गया है कि गर्मा के समय में किसान जो है मैक्सिमम किसान बृहद पैमाने पर लतरवर्गीय फसलों की खेती सब्जी के रूप में करते हैं, और बहुत विगत वर्षों से और करते आ भी रहे हैं और अच्छे अच्छे प्रभेद का उत्पादन भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन सब्जियों के उत्पादन में किन किन तकनीकी पहलुओं पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए उस पर मैं कुछ किसानों को अवगत कराना चाहूँगा। किसान बंधु जैसा जानते हैं कि हम सभी लोग जो लतरवर्गीय फसल की खेती करते हैं तो उनमें विशेष तौर पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने जो प्रभेद का चुनाव है, जैसे यहाँ खीरा भी है, लौकी है, आपका झिंगी है, नेनुआ है, करेला है
1: जी,
2: बहुत सारा जो लतरवर्गीय जो है हमारे किसान कर रहे हैं। तो इसमें किसान को मैं बोलूँगा कि ये जो आप जो प्रभेद का चुनाव जो है अच्छे मतलब अच्छा करें, और साथ साथ बीज उपचार करने के पश्चात ही तैयार खेत पर लगाएं। तो इस संबंध में मैं किसानों को ये कहना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जहाँ पर भी आप खेती के लिए सोचे हैं, तो जो किसान तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में जो बिजरा गिरा चुके होंगे जो पॉली बैग उग में, तो लोग तो कुछ है 15-20 दिन एक महीना आघात फसल जो पाएंगे तो उनको उत्पादन कम मिलने के पश्चात भी ज़्यादा उनको मुनाफा होगा
1: जी।
2: तो और वैसे किसान जो अभी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो उनको जो है किसान जो है जो प्रभेद उन्हें उचित लगे चाहे बाजार में और जो लगाते आ रहे हैं, तो उसमें मेन ये है कि जो आप बीज ले आ रहे हैं तो बीज को पहले उपचारित करें
1: जी।
2: उपचारित करने के लिए जो दवा आप लोग सामान्य तौर पर कार्बेंडाजिम बेविस्टिन के नाम से जो जानते हैं हम लोग, उसका 2 ग्राम प्रति किलो बीज इसको ले, और उसको पहले 1 किलो अगर बीज रहता है तो उसमें 2 ग्राम पाउडर डालना है।
1: अच्छा।
2: आप पाउडर से उसको उपचारित करने के बाद उसको ठंडे जगह पर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तत्पश्चात उसको जो है तैयार प्लॉट में जो आप प्लॉट जहाँ तैयार किए हैं उसको छोटा छोटा पिट बनाकर उसमें 4 से 5 बीज जो है एक पिट पर लगाएं। और ये जो बीज जो आप लगा रहे हैं तो बीज को लगाने के पश्चात उसको जो है और आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर आप उस बीज को जरा भुरभुरे गोबर के खाद से ही उसको ढके तो ज़्यादा अच्छा होगा, जर्मिनेशन अच्छा होगा। ये वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, अन्य खादों के रूप में जैसे कि हम लोग फसल के रूप में 100-50 का जो हम लोग उपयोग करते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, मतलब 100 kg नाइट्रोजन, 50 kg फास्फोरस, 50 kg पोटास प्रति हेक्टेयर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें कि एकड़ के दर से देखा जाए तो हमारा जो है 40 kg आपका ये आ जाता है नाइट्रोजन, जिसको हिंदी में आप लोग हम लोग नाइट्रोजन यूरिया के रूप में हम लोग डालते हैं, DAP के रूप में डालते हैं। उसके पश्चात जो है हमारा ये जो है आपका 15 kg जो है आपका 20 kg फास्फोरस, 20 kg पोटास जो है प्रति एकड़ के दर से डालते हैं। इसको डालने के लिए भी आपका एक सावधानी ये बरतना है कि किसान बंधु जो है यूरिया खाद जो है जो नाइट्रोजन है उसकी पूरी मात्रा, जैसे हमने 100 kg बोला तो 100 kg को पूरी मात्रा को प्रति हेक्टेयर के दर से जो करते हैं तो इसको कम खेत में पहले डाल के अच्छा से मिलाने के पश्चात पीट बनाएं। अगर थोड़ा चाहते हैं कि नहीं क्वांटिटी में हमारे पास कम है तो उसको पीट में ही उपयोग करें, प्रति पीट जो है आप जो है उसका उपयोग करेंगे तो इससे आपका खाद का मात्रा भी कम लगेगा और किसान को वहाँ भी जो आप इनपुट के रूप में जो लागत लगाते हैं उसमें बचाव आएगा।
1: अच्छा।
2: उसके बाद है जैसे खाद को अच्छा डालने के बाद ये करने के बाद पौधे को जो है दूरी मेंटेन करना जरूरी है। दूरी मेंटेन करने के लिए मैं प्रायः किसानों को बोलता हूँ कि अगर आपका दूरी अच्छा रहेगा, जैसे कि अब लतर वर्गीय में अब कद्दू है, नेनुआ है, झिंगी है, तो लतर के बढ़ाव के अनुसार जैसे ज़्यादा बढ़ने वाला लतर है तो उसको 2 से 2.5 मीटर रखिए, कम बढ़ने वाला है तो 1 से 1.25 मीटर रखिए। तो लतर के बढ़ोतरी के अनुसार ही अपना जो है आप दूरी को निर्धारित करें। तो जैसे लौकी लगाते हैं तो लौकी में किसान बंधु भी क्या करते हैं कि बहुत नज़दीक नज़दीक लगाने से क्या होता है कि पौधे का बढ़वार अच्छा नहीं होता है और बहुत ज़्यादा घना भी हो जाता है, जिसके चलते रोग व्याधि का आक्रमण ज़्यादा होने लगता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगा कि लतर का बढ़ते हुए देखते हो, जैसे कि अब कोहड़ा है, लौकी है, तो इसको आपको लगाना है तो 2 से 2.5 मीटर पर लगाइए, नेनुआ है, करेला है, खीरा है, तो इस सबको 1 मीटर से 1.25 मीटर की दूरी पर लगाइए। तो इस तरह आप लगाएंगे तो एक निर्धारित दूरी पर होने से पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और कम बीज में ज़्यादा एरिया कवरेज होगा और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं
1: जी।
2: इसके बाद है कि जैसे लगाने के पश्चात बीमारी है और गर्मी क्रम में खास तौर पर यह देखा गया कि पानी की समस्या बहुत अहम हमारे पलामू क्षेत्र में है, तो वैसे केस में किसानों को बोलूँगा कि जगह का चयन जो आप करते हैं उसको ऐसे जगह पर करें जो कि नहर नादी चाहे नाला उला के बगल में हो, जिसका कि पटवन आप सही ढंग से सही समय पर कर सकें। अन्यथा ज़्यादा आप एरिया लगा दिए और लगाने के पश्चात पानी नहीं है तो उसका बढ़ोत पौधे का कोई महत्व नहीं, ग्रोथ में नहीं मिलता है और अच्छा उत्पादन नहीं होता है। तो किसान जो है इन सब पहलुओं पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएंगे। और साथ साथ में अगर किसी तरह का फफूंद आ जाता है, अगर कीड़ा का आक्रमण होता है, तो इसमें इमिडाक्लोरोपीड दवा जो है 1 ml दवा तीन लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर फफूंद नाशी है तो जो कार्बिंडाजिम आपने उपचार करने में लगाया था उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करेंगे तो उससे आप निजात पा सकते हैं। हाँ, अगर पाउडरी मिल्ड्यू है, देखेंगे कि उजला उजला पाउडर लग जाता है चाहे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है हम सल्फेक्स दवा का उपयोग करते हैं, उसका जो है 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से डालेंगे तो वो जो है उसका छिड़काव करें तो आपका फसल अच्छा रहेगा और ज्यादा इनकम होगा
1: जी। अच्छा, बात आती है चूंकि लत्तर वर्गीय सब्जियों की हो रही है तो मचान की बात आती है
2: जी जी,
1: तो वो कितना कारगर साबित होता
2: है? हाँ, मचान अति आवश्यक होता क्या है कि लत्तर वर्गीय फसल का बढ़ाव बहुत ज्यादा होता है जिससे पौधे में हवा का संचार और लोगों को आने जाने में लत्तर जो है टूटने का बहुत ज्यादा डर लगता है। तो वैसे में अगर किसान जो किसान एक ओपन फील्ड में लगाए हुए हैं और एक जो है कि मचान के रूप में लगाए हैं तो मचान वाले पर अगर चढ़ाते हैं तो उनका पौधे का विकास उचित होता है और फल तोड़ने के भी प्रक्रिया में उनको बहुत सहूलियत होती है जिससे कि अच्छा फल का जो है प्रॉपर वे में वो तोड़कर और बाजार भेज सकते हैं। और ये जो जमीन समतल जमीन पर ओपन कंडीशन में ऐसी लगा हुआ है तो उसमें घुसने और आने जाने से लत्तर बर्बाद ज़्यादा होता है और फसल का जो विकास में बाधा आने से पौधा उपज जो है थोड़ा कम मिलता है।
1: इन सभी पहलुओं पर आपने विस्तृत जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं एक सफल किसान जो पलामू जिला के पाटन प्रखंड के हिसरा बरवाडी गांव से आते हैं और ये किसान भाई ने गर्मा सब्जियों की खेती कर रखी है, गर्मा अन्य जो फसलें हैं अनाज फसलें उसकी भी खेती कर रखी है, इसके साथ ही साथ ये बागवानी पर इनका विशेष बल रहता है। और आप हैं अजय कुमार मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: अभी आप गर्मा में किन किन सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं अजय कुमार मेहता ग्राम हिसरा बरवाडी पाटन से हैं। अभी गर्मा फसल में हम लोग का है कद्दू है, करेली, झींगी, नेनुआ, खीरा, मिर्चा, सभी तरह का गर्मा फसल अभी लगा हुआ है।
1: अच्छा।
3: प्याज अभी और बरसाती फसल का भी तैयारी हो रहा है।
1: बरसाती की तैयारी अभी से शुरू कर दी?
3: जी जी, अब तैयारी हो गया।
1: उसके लिए क्या क्या तैयारियाँ की जा रही हैं?
3: जिससे खेत को जुताई हो गया, खेत एकदम सूख के तैयार है, उसके बाद हम लोग मेड़ बना देंगे, मेड़ में पानी डालेंगे, इसके बाद बीज को रोपाई करेंगे।
1: मेरा खेत किस प्रकार होना चाहिए बरसात की खेती के लिए?
3: खेत हमारे ढालू नुमा होना चाहिए जिसमें पानी की जल जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात में जब अधिक बारिश होने के बाद जल जमाव हो जाता है जिसके पौधा का नुकसान हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ ढालू जमीन की ज़रूरत है गर्मा बरसाती साग सब्जी लगाने के लिए।
1: और बरसाती साग सब्जियों में किसके किसके विचार आपने किए हैं सब्जियों की?
3: जिससे बरसाती में भी हो गया कद्दू हो गया, करेली हो गया, नेनुआ हो गया, खीरा हो गया, ये सब अभी बरसाती लगेंगे जो अब वो हम लोग ई पर लगाते हैं, किसी भी पौधा को काट करके उसको झाल बना देते हैं उसी पर उचड़ करके ऊपर फलेगा। गर्मा फसल में जो भी हम लोग उत्पादन होता है तो ज़मीन में भी फला रहता है, इसलिए कि वो ऊपर में जाएगा तो गर्मी बहुत ज़्यादा हीट होता है इसके कारण वो फल में नुकसान होने लगता है, लेकिन बरसाती फसल में वो नहीं है, सब जो भी होगा उसको हम लोग बांस का चाहे बांस तार में बांध कर उस पर हम लोग लतर को चढ़ा करके बरसाती फल को हम लोग लेते हैं।
1: अच्छा, और अब हम बागवानी की ओर लौटते हैं। बागवानी में अभी आपने क्या क्या लगा रखा है?
3: जैसे अभी आम हम लोग लगाए हैं, अमरूद है, और अभी फल भी आ चुका है, आम में बहुत अच्छा फल है।
1: अच्छा। और आम की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी?
3: आम जैसे हम लोग का मंजर आया उसके बाद हम लोग छिड़काव किए कीटनाशक का, और इसके बाद में हम लोग उसका 2 बार किए, इसके बाद फल आना स्टार्ट हो गया तो उसको हम लोग छोड़ दिए, ज़्यादा दवा का यूज हम लोग नहीं किए।
1: कौन कौन से किस्म के आम है?
3: वो हम लोग इधर तो लोकल में हम लोग लंगड़ा और दशहरी के नाम से ही जाने जाते हैं, और मैंने ज़्यादा लंगड़ा का फल है
1: और उसी को आपने लगाया है?
3: जी जी।
1: और खासकर खाद उर्वरक का व्यवहार क्या कर रहे हैं अभी आप?
3: खाद में हम लोग गोबर खाद का यूज कर रहे हैं पेड़ के नज़दीक भी, चाहे हम लोग साग सब्जी भी लगाते हैं तो बीज जहाँ लगाते हैं वहाँ हम लोग खाद पहले डाल देते हैं, गोबर खाद मिला कर मिट्टी और गोबर खाद मिला करके इसके बाद बीज को डालेंगे वहाँ, और इससे पौधा भी जर्मिनेशन होने में भी बहुत जल्दी जर्मिनेशन होता है, क्योंकि मिट्टी वहाँ एकदम भुरभुरा हो जाता है, हार्ड मिट्टी नहीं रहता है, और जर्मिनेशन होने में पौधा का किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए हम लोग बर्मी कंपोस्ट कहिए चाहे केचुआ खाद कहिए चाहे घरेलू खाद उसी का यूज कर रहे हैं।
1: और आम के अतिरिक्त और कौन से पौधे हैं?
3: आम के अतिरिक्त तो ऐसे फिर तो काम के पौधे हैं, नींबू है, फिर अनार का भी कुछ पौधे हैं और आम है ही, और केला था लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया इसके चलते नहीं हो पा रहा है।
1: केला की देखरेख कैसे कर रहे हैं अभी आप?
3: केला जैसे हम लोग लगा देते हैं, इसके बाद में फिर पानी उसके मेड़ के बना करके नज़दीक से पानी उसको दिया जा देते हैं, और 8 दिन 10 दिन पर पानी, बरसात में तो खैर पानी नहीं लेता है लेकिन गर्मी में 8 से 10 दिन के अंदर पानी 2 बार देना ही पड़ता है।
1: और अभी गर्मी के दिन में?
3: गर्मी के दिन में 8 दिन में 2 बार पानी देते हैं उसमें। गर्मी के दिन में जैसे हम लोग जैसे नींबू का पौधा लगाए, अमरूद का लगाए, केला है, आम का है, उसमें हम लोग पानी मेढ़ बना देते हैं और मेढ़ से पानी उसके अंदर हम लोग डालते रहते हैं। 8 दिन में 2 बार हम लोग पानी का देना पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पलामू में पड़ रहा है जिसके चलते फसल का नुकसान होने लगता है।
1: केले के हम अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
3: केला का उत्पादन अधिक से अधिक करना है तो 10 फीट के अंदर दूरी 10-10 फीट पर लगाएं, उसमें कोड़ाई उड़ाई करके बर्मी कंपोस्ट खाद जहाँ से भी है कहीं से भी उपलब्ध है अपने घर में है हम लोग उपलब्ध करके बीच में डाल डाल करके उसको हम लोग करें और अच्छा उत्पादन होता है। सबसे अधिक केला पलामू में हम लोग का लोकल केला का मांग होता है सब्जी के लिए, जो कि बहुत अच्छा तरह से पैसा हम लोग को मिलता है और इसमें किसान लगाते हैं और बहुत अच्छा तरह से लाभ भी ले रहे हैं।
1: आपने जो भी लगाया है सब सब्जी फसल की?
3: हाँ, हम जो भी लगाए हैं सब सब्जी फसल की।
1: कितना लगा होगा केला?
3: अभी कम से कम 25 से 30 थान केला मेरा है।
1: अच्छा अच्छा, तो अभी उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं?
3: हाँ, अभी गर्मी में तो कुछ कुछ कम है लेकिन ये गर्मी के पहले ज़्यादा था और अभी 5 से 7 पौधा तैयार है मेरा।
1: अच्छा जी, जो मैंने फल दे रहा है?
3: फल दे रहा है।
1: अच्छा अच्छा, और अनाज वाली फसलों पर हम आते हैं, गर्मा अनाज की फसलें, उसमें अभी कौन कौन सी मुख्य फसलें लगी हुई हैं खेतों में?
3: अभी गर्मा में तो हम लोग को मूंग लगा हुआ है, सबसे पहला चीज मूंग लग गया है। मूंग हम लोग के कम से कम 1 माह के अंदर फल आना स्टार्ट हो जाएगा। और गेहूं था तो गेहूं अब तो गर्मा फसल में कट चुका, और इसके बाद में मूंग ही मुख्य अभी हम लोग का खेती हुआ है।
1: अच्छा, मूंग की खेती किस प्रकार हमारे ग्रामीण बंधु करें कि जिससे कि मतलब अधिक मुनाफा हो, और कीड़ों की देखरेख किस प्रकार करें?
3: हाँ, हम लोग जिसे गेहूं की कटाई होता है चाहे खेत खाली जो खेत है उसको अच्छी तरह से जुताई हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद सबसे पहले पटवन करते हैं, पटाने के बाद उसमें जुताई कर लेते हैं और जुताई करने के बाद हम लोग मूंग लगा देते हैं। मूंग लगा जिसे पटाई हम लोग किए तो पटाने के बाद जो है से 10 से 15 दिन के 20 दिन के बाद फिर पानी हम उसको देंगे। जब पौधा 2 पत्ता 3 पत्ता का हो जाता है तो 15 से 20 दिन का में हम लोग पानी उसमें फिर डालेंगे, और अच्छे उत्पादन के लिए उसमें हम लोग अब तो भर में हम लोग के जो भी खेत रहता है से सब गोबर खाद से भरा हुआ रहता है, किसी तरह खाद का यूज हम लोग नहीं करते हैं मूंग में। और
1: मतलब कुल मिलाकर जैविक खेती की ओर?
3: हाँ, जैविक खेती
1: ध्यान दिया जा रहा है।
3: जी
1: जी, जी। और अब इसकी मांग भी है, चूँकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहती है, जल धारण क्षमता बनी रहती है, गुणवत्तापूर्ण फसल आप उत्पादन प्राप्त करते हैं।
3: जी,
1: और मूंग के अलावा और कौन से दलहनी फसल है?
3: मूंग के अलावा अभी राहर कट चुका है।
1: अच्छा,
3: राहर था।
1: कैसा उत्पादन हुआ?
3: ठीक ही था लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है मेरे यहाँ नीलगाय, सबसे ज़्यादा बहुत परेशानी है। फल आता है सबसे अधिक फल को नुकसान कर देता है, सब चर जा रहा है।
1: मसूर?
3: मसूर का उत्पादन ठीक था, मसूर में उतना नुकसान नहीं करता है, मसूर अच्छा था।
1: आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियां आपने साझा की, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: घड़ी इशारा कर रही है, समय समाप्त होने को है,
1: तो चलने से
4: पहले हम लोग लेते हैं इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी और ग्रामीण सभा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण रांची केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस ने एक सीट पर दावा जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता दोनों सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
5: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
4: कोडरमा समाहरणालय में आज केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और बिजली विभाग समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और सभी योग्य लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है। राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई से अनमैप्ड मतदाताओं की सूची प्रकाशित है। सभी मतदाताओं से आग्रह किया गया है कि वे अपनी सुविधा अनुसार उक्त सूची का अवलोकन करते हुए बीएलओ के माध्यम से मैपिंग की प्रक्रिया में भाग लें।
6: विगत गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग की प्रक्रिया जारी है। सभी बूथों पर अनमैप्ड मतदाताओं की सूची 23 मई 2026 से प्रकाशित की जा चुकी है। इस अनमैप्ड मतदाता सूची में आपके क्षेत्र की बीएलओ का नाम और मोबाइल नंबर भी अंकित रहेगा। आप सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि कृपया अपना, अपने परिवारजनों का एवं अपने मित्रों का नाम इस सूची में अवश्य जांचें। अगर आपकी मैपिंग अब तक नहीं हो पाई है तो अपने बीएलओ से संपर्क करके अपनी मैपिंग अवश्य करा लें। एसआईआर के इस विशेष अभियान का हिस्सा बने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दें।
4: झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में मंथन जारी है। आज रांची पहुंचने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि 2 सीटों में से 1 सीट गठबंधन के सहयोगी दल के रूप में कांग्रेस को मिलनी चाहिए।
7: हम सीट फिनिश के साथ बैठ के अगले राज्यसभा इलेक्शन के बारे में क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या रणनीति होगा, हमारा कांग्रेस कैंडिडेट राज्यसभा में दे सके, ये बात करने के लिए हम इधर आया। हमारा उम्मीद ये होगा लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। हम स्पष्ट रूप से कहा झारखंड के मामला में तो झारखंडी सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है।
4: इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज की पार्टी का का ही उम्मीदवार हो।
8: बैठक हो रही है और मुख्य भूमिका में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और सभी से विचार विमर्श करके घटक दलों को विश्वास में लेकर ये फैसला होगा। लेकिन झामुमो कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि इस बार दोनों सीट पर झामुमो के उम्मीदवार जाएं, खुशी का माहौल झारखंड में बनेगा। इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल कांग्रेस पार्टी है, दावा बनता है, अच्छी बात है।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क, झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
9: मैं आप सभी के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूंगी कि सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: पलामू प्रमंडल के बूढ़ा पहाड़ इलाके में जनगणना कार्य सामान्य तरीके से शुरू हो गया है। पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि इस बार क्षेत्र की स्थिति पूरी तरह बदली हुई है और जनगणना कर्मियों को नक्सलियों का खतरा नहीं है।
10: उग्रवाद को लेकर के लगातार अभियान चलाए गए और वहां पे सफलता मिली। आज के डेट में वहां टिकट भी है। सभी स्थान पर जनगणना का कार्य आरंभ किया गया है। आने वाले समय में उस क्षेत्र में भी जनगणना की जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार का वो क्षेत्र है, कह सकते हैं कि उसका इतिहास रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो है जिला प्रशासन के स्तर से, जिला पुलिस के स्तर से कराए जाएंगे, जिसका निश्चित तौर पर वरीय स्तर से भी अनुश्रवण किया जाएगा।
4: रांची पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के संगठन प्रमुख और 10 लाख रुपए के इनामी उग्रवादी अमृत होरो को गिरफ्तार किया है। रांची SSP राकेश रंजन ने बताया कि अमृत होरो हत्या, रंगदारी, लेवी वसूली, फायरिंग और आगजनी जैसी कई घटनाओं में शामिल रहा है।
11: वर्तमान में PLFI को झारखंड में अमृत होरो के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था। हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि अमृत होरो लापुंग थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह पर आया हुआ है। टीम बनाकर हम लोगों ने तुरंत वहां पर छापेमारी करवाई। छापेमारी में जो PLFI का वर्तमान स्टेट चीफ है अमृत होरो, जो 10 लाख का इनामी भी है, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। उसके साथ हमें हथियार, कारतूस, घुसपर्चे इत्यादि बरामद हुए हैं। बड़ा कैच है ये, और इसके बाद अब PLFI पूरे तरीके से मुझे लगता है कि डिसबैंड हो जाएगा।
4: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य शलीला श्रीवास्तव ने आज नई दिल्ली में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान ऐप के प्रायोगिक संस्करण का शुभारंभ किया। इस डिजिटल एप्लीकेशन का उद्देश्य देश भर के स्कूलों और कॉलेजों को तंबाकू मुक्त बनाना है। और अब मौसम का हाल। झारखंड में आज और कल मौसम आमतौर पर गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा और डाल्टनगंज समेत उत्तर पश्चिमी जिलों में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहेगा। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम फाइनल में पहुंचकर खिताब के लिए मुकाबला करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में विकास योजनाओं की समीक्षा की। कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहयोग की अपील की। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। कांग्रेस ने 1 सीट पर दावा जताया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता दोनों सीटों पर पार्टी उम्मीदवार उतारने के पक्ष में। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
12: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पलामू संवाददाता।
1: सदर अस्पताल परिसर में नन्हा सा दिल बाल हृदय जांच एवं निवारण को लेकर झारखंड में इको कैंप का आयोजन किया जा रहा है।

0: है। इस क्रम में सदर अस्पताल डाल्टनगंज में भी दर्जनों बच्चों का इको हार्ट कार्डियक स्क्रीनिंग की गई। इस पर प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव दत्त ने बताया कि 23 मार्च से 100 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। 20,000 बच्चों की जांच का लक्ष्य पूरे झारखंड में रखा गया है।
1: 100 दिन का कार्यक्रम

0: जाना है और आगे की ऑपरेशन तक सुविधा प्राप्त कराना है। इस कार्यक्रम में जो भी बच्चे संदिग्ध पाए जाएंगे वो कन्फर्म्ड होंगे, उन बच्चों का हमारा सेंटर रायपुर, हैदराबाद, मुंबई एवं दिल्ली पलवल के सेंटर में हम भेजेंगे, जो कि एक बच्चे के साथ दो परिजन का जाने आने का किराया, हॉस्पिटल में रहने खाने का एवं ऑपरेशन दवाई संपूर्ण मुफ्त है। इसलिए कार्यक्रम 0 से लेकर 18 साल का है, परंतु इसमें 24 साल के बच्चों को भी हमने ऑपरेशन कराया है।
1: पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद में शनिवार को गोली चल गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने सदर अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
2: बहुत ही दुखद घटना है और ये दुखद घटना को भरपाई करना बहुत मुश्किल है। आज कोई व्यक्ति अगर घर बना रहा है और जबरदस्ती यहाँ पे जाकर लोग मारपीट करके हत्या करने के काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये प्रशासन के नाकामी है। इस चीज को मैं दर्शाऊंगा और मैं एक व्यक्ति की हत्या भी हो गई और उनके परिवार के 4-5 सदस्य बुरी तरह घायल हैं, जिनका इलाज कराना और जिनको देख रेख करना बहुत ही मतलब मुश्किल घड़ी में आज हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज कहीं ना कहीं उन लोगों का मनोबल बढ़ने का कारण है लाइसेंस हथियार, घर में हथियार, किसी को गोली मार देना, किसी के ऊपर जमीन हड़प लेना, ऐसे तमाम मुद्दे। मेरे ख्याल से प्रशासन को पूरे गंभीरता से इस पर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता के साथ इस पर कार्रवाई भी करना चाहिए ताकि इन परिवार को न्याय मिले, क्योंकि इनके 30-35 साल का एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इससे बड़ा और दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है।
1: पलामू के चैनपुर गोलीकांड में शामिल 2 अपराधी पकड़ लिए गए हैं जबकि 15 अपराधी अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी साझा की।
3: विगत 23 तारीख को चैनपुर थाना अंतर्गत गांव रामपुर में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें की गोलीबारी की घटना भी घटित हुई थी। इस संबंध में जो विक्टिम है, विक्टिम पक्ष के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज हुई। FIR में 17 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाए गए और 25 लोग अन्य अज्ञात के विरुद्ध में FIR दर्ज की गई थी। FIR दर्ज होते ही कांड की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया। SIT दल के द्वारा जिले में तथा जिले के अन्य जगह पर, जिले के बाहर अन्य जगह पर भी लगातार छापेमारी की जा रही थी, जिसके दौरान जो घटना में शामिल नामजद जो 17 अभियुक्त थे उनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है।
1: प्रधान डाकघर डाल्टनगंज में पलामू डाक मंडल के डाक अधीक्षक संजय कुमार संगम ने आधार सेवा के अतिरिक्त काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक आधार कार्ड का काम किया जाएगा। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू।
4: अभी आप सुन रहे थे पलामू जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे हमारे रांची केंद्र का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। आज के एक रंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अमिताभ बच्चन की फिल्मों के।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

0: इसीलिए तो कह गए हैं, जति सती करम ही गति, आए मिले जो संग पिशाच का, सदा मिले बुरी मति बुरी मति।
1: But where is Bhanumati?
0: Bhanumati? Are Bhan

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से।

हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

0: नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
2: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
1: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल और अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
4: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच और कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत संस्थान या तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. education against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advance to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has announced a major structural shift in border management with the introduction of a new quadripartite security grid. He said securing our borders and eradicating illegal immigration is vital to protecting the nation's demography. He was addressing the troops and public gathering after inaugurating the strategically crucial G7 and G13 border outposts along the India-Pakistan border in Bhuj, Gujarat today.
4: We have decided to completely transform the concept of the BSF's border security. In the coming days, we will create a security grid based on a four-dimensional concept. And instead of focusing solely on border security, we will introduce a new concept of territorial security. Under the Smart Border Security Project, we are working to strengthen the security grid along the entire border with Bangladesh and Pakistan.
3: The minister said central government is leveraging cutting-edge technology, including drones, radars and modern fencing, to establish an unbreachable leak-proof security grid. Moving beyond traditional border security, this model introduces the concept of complete territorial security by actively integrating citizens, civil administration, the local police and the military alongside the BSF. Referring to international borders, Mr. Shah added that with the formation of the new government in West Bengal, the long-standing deadlock has ended and the state government has provided land for border fencing within a single week. Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan today said that a national seed reserve of 1,74,000 quintals has been established to ensure seed availability to farmers. Addressing media on the second day of National Conference on Agriculture for Kharif Campaign 2026 in New Delhi, Mr. Chauhan said that 9,76,000 farmer IDs have been created so far. He said that the farmers will no longer need separate documents to access different schemes. Mr. Chauhan stressed the need for transparency in fertilizer distribution, prevention of black marketing, and ensuring proper supply to genuine farmers.
5: Save the Farm campaign, Khet Bachao Abhiyan, this cannot run without you. From June 1st to June 30th, all of you will also have to step out. I will also step out. You should also step out and tell the rest of the ministers, central ministers, public representatives and MLAs that they should also step out. Everyone will have to go. Let the public representatives lead this. How much fertilizer, which pesticide, whatever the requirement for pesticides is, we will reduce it and eliminate it.
6: किसान सम्मान निधि में कोई रह गया है औपचारिकता पूरी करके उसका लाभ हम दे दें.
3: The government has said that there is sufficient stock of petrol, diesel and LPG in the country and all the refineries are operating at the optimum level. Addressing an inter-ministerial media briefing in New Delhi, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said that LPG production is at all-time high, which is around 92,000 metric tons per day.
7: LPG ka production, it also depends on the optimization activity which is taken up within the refinery and that impacts the production and that's why we have slight up and down. One thing. Second is we are also giving the part of the pool for C3, C4 molecules. Third important thing is some of the refineries have come back to operations and other than that we are getting more, you know, LPG because of the optimization from some of the refiners.
3: Ms. Sharma also informed that no dry out has been reported at any LPG distributorship. Speaking about retail outlets, she said 150 districts have reported 30% growth in petrol, while 156 districts reported more than 30%. She said that the government is reviewing the situation. Director, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma said that a merchant vessel, Nissos Keros, a crude oil tanker, has safely transited the Strait of Hormuz.
8: A merchant vessel, Nisos Keros, a Marshall Island flag crude oil tanker, safely transited Strait of Hormuz on the night of 25-26 and is bound to arrive at Vishakhapatnam on 3rd June. This merchant vessel is carrying crude oil, approximately 2,70,000 metric tons. It has all foreign crew members and is a Marshall Island flag vessel. All Indian seafarers in the region are safe and no incident involving Indian seafarers, either on Indian flag or foreign flag merchant vessel, has been reported.
3: Union Education Minister Dharmendra Pradhan today said that the incident of paper leak was extremely unfortunate and should not have happened. In an exclusive interview with DD News, Mr. Pradhan assured that the re-examination process will be conducted in a proper and systematic manner without any errors. He also appealed for everyone's cooperation in carrying out the task smoothly.
9: The incident is very unfortunate. It should not have happened. Now that we have announced re-NEET, it should be conducted properly and done with care. This is our responsibility. We expect everyone's cooperation in this work.
3: Addressing the students, Mr. Pradhan assured them that the government understands the

0: जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा दृढ़ मजबूत प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: मगरबी बंगाल में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने रियासत में तरंदाजी पर तशवीश जाहिर की। अन्ना में इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि साबिका सरकार तरंदाजी वाजे किया कि पहले के टीएमसी इंतजामिया ने मरकज की जानिब से बरवक्त खुतू कायदा तार बार करार दिया। उन्होंने उजागर किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि मर्दमशुमारी की कार्रवाइयों के जरिए जमा किए गए आदाद और शुमार को एमए तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। म्यांमार के सदर यू मिन हांग आज दोपहर में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि दो तरफा बातचीत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर तबादले ख्याल करेंगे। ये मुनक़दा मीटिंग के बारे में जनाब जायसवाल ने कहा कि मुज़ाकरात तामीरी और मुस्बत थे। बांग्लादेश के गैर कानूनी माइग्रेंट से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जनाब जायसवाल ने कहा कि तमाम गैर कानूनी माइग्रेंट्स के मामले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई। अकरात पर तर्जमान ने कहा कि भारतीय तजारती टीम ने अप्रैल में अमरीका का दौरा किया है जिसमें तजारती उमूर पर मजीद बातचीत की जाएगी। और तमाम रिफाइनरीज पूरी सलाहियत के साथ काम कर रही हैं। नई दिल्ली में बैन बाजार अदा है जो कि तकरीबन 92,000 मेट्रिक टन योमिया है।
2: हमारे यहां पर पेट्रोल और डीजल और क्रूड की सफिशिएंट इन्वेंट्रीज टाइड अप है। हमारी सारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर लगभग 92 TMT पर डे। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है।
1: एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट अजला ने 30% से ज्यादा इजाफे की रिपोर्ट दी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क की

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर हैं आज के फनकार।

Look at her.

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफ़ी मेहनत और काफ़ी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो ज़िंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफ़र थिएटर और टेलीविज़न और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहाँ पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए। और 22-1 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं हैं। आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं, उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं। तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है, और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा, या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगेय राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा आया।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में, ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे वो मेरे मित्र थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तरनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस लिफ्ट के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद, लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट 5वें-6वें माले तक ऊपर गई तो जाके वहाँ हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे, और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए, और एक एक करके आराम आराम से उतरे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन एक फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद है।
0: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की तीन

फिल्में आपने जरूर देखी होंगी। धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को

0: दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार फिल्मी।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, और हम पेश कर रहे थे सदाबहार फिल्म नगमे राज कपूर की फिल्मों के। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन

पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है इससे मूल्यांकन

को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 00118004 and through email at resultcbsc2026@cbscshiksha.in. In IPL cricket, chasing a target of 215 runs set by Rajasthan Royal, Gujarat Titans were 185 for 2 in 15.5 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की सभा। प्रातःकालीन प्रसारण में सुबह 5:55 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।